एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 13 जुलाई वर्ष 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा यहीं प्रारंभ होती है। सभी श्रोताओं को सुप्रभात।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 6 बजे हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्चस्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इसे

0: यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देशों के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। लीजिए अब सुनिए चिंतन। विषय है रिश्ते।

रिश्ते अर्थात संबंध। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वो अनेक प्रकार के बंधनों में रहता है। ये बंधन उसे बोझ लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं बंधनों से मनुष्य की सामाजिक मर्यादा कायम रहती है। समाज में आपसी

अर्थात रिश्ते होना बहुत आवश्यक है और इन रिश्तों को हम बहुत से नामों से जानते हैं, जैसे जहां हम रहते हैं वहां रहने वाले पड़ोस के रिश्ते, विद्यालयों में गुरु शिष्य के रिश्ते, मालिक नौकर के रिश्ते, पारिवारिक रूप में माता पिता, पिता पुत्र, बहन भाई, पति पत्नी और परिवार में ही रिश्तों की एक लंबी श्रृंखला है। सभी प्रकार के रिश्तों को निभाने के लिए हमारे मन में आदर और सम्मान की भावना होनी चाहिए। रिश्तों में मिठास, उल्लास और खुशी बनाए रखने के लिए हमें सदैव बोलते समय संयम रखना चाहिए। कई बार कटु वचनों के प्रयोग से रिश्तों में कड़वाहट घुल जाती है, हालांकि सामान्य रूठना और मनाना किसी भी रिश्ते का आवश्यक अंग है, लेकिन किसी बात को गांठ बांध लेना कोई अच्छी बात नहीं। इससे रिश्तों की सहजता खत्म हो जाती है और जहां अपनापन और प्रेम खत्म हुआ वहीं से रिश्ते बेगाने हो जाते हैं। कभी कभी धन और अहम की भावना यानी अहंकार भी रिश्ते बिगाड़ने में अपनी बड़ी भूमिका निभा जाते हैं। वास्तव में ये बात सही है कि तलवार के घाव एक बार फिर भी भर जाते हैं, लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम सभी रिश्तों का पूरा सम्मान करें और इनकी मर्यादा भंग न होने दें। रहीम जी का एक प्रसिद्ध दोहा भी है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए मनुष्यों के सभी रिश्ते सहज और प्रेममय बने रहें, ये हमारा ही दायित्व है। ऐसा ना हो कि बिगड़े हुए रिश्ते जिंदगी भर आंखों से रिश्ते रहे। इसलिए बड़प्पन दिखाइए और दरकते हुए रिश्तों को आगे बढ़कर संभाल लीजिए।

आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था रिश्ते। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। लीजिए अब सुनिए वंदना।

अभी आप सुन रहे थे सागर व्यास का गाया हुआ भक्ति गीत। आइए अब सुनते हैं सुमन यादव की आवाज में कार्यक्रम की अगली रचना।

अभी आप सुन रहे थे सुमन यादव का गाया भजन। आइए अब सुनते हैं अगली रचना अखिल सोनी की आवाज में।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग।

राजा दशरथ के चारों कुमार अपनी अपनी वधुओं सहित अयोध्या के राजद्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। पूरी नगरी में मांगलिक शकुन वस्तुओं की सुगंध के साथ रानियों के मंगल गीत गूंज रहे हैं। सोने के थाल में अक्षत चंदन लेकर माताएं परिछन करने चली। धूप के धुएं से आकाश यूं आच्छादित है जैसे सावन के काले कजरारे बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हों। आकाश से कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। शुभ समय विचार कर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी तो राजा दशरथ ने शिव, पार्वती तथा गणेश का स्मरण करके समाज सहित नगर में प्रवेश किया। श्री राम की जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ मंगलवाणी दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। अयोध्यावासी अपने राजकुमार पर वस्त्र और मणिमोती न्योछावर कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देख सरस्वती को भी कोई उपयुक्त उपमा देते नहीं बनती। नव विवाहित कुमार और उनकी वधुएं जब राजद्वार पर पहुंची तो आनंदित माताओं ने उनकी परिछन की, आरती उतारी।

श्री रामचरितमानस गण का ये प्रसंग यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 6:40 हुए। लीजिए प्रस्तुत है आज की सभा में शेष रहे कार्यक्रमों एवं प्रसारणों का संक्षिप्त विवरण।

अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 6:45 पर हमारे किसान श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम खेती नी बात। 6:50 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। प्रातः 7:20 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम वातायन।

प्रातः 7:30 पर 10 बजे और पुनः 12 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे समाचार प्रभात प्रातः 8 बजे।

कार्यक्रम सुगम संगीत को आप सुन सकेंगे प्रातः 9:10 पर और पुनः 11 बजे। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा प्रातः 9:30। वहीं प्रातः 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

हमारे सायंकालीन सभा में शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। शाम 5:30 पर विविध भारती के कार्यक्रमों को आप सुनेंगे मुंबई से। 6:30 पर आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार कार्यक्रम जिले की चिट्ठी।

राजस्थानी में प्रादेशिक समाचारों को आप सुन सकेंगे शाम 6:45 पर। कार्यक्रम चौपाल का समय रहेगा शाम के 7:00।

जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे शाम 7:30 पर। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

रात्रि 9 बजे विविध भारती के मुंबई केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: आप सुन रहे थे दिनभर के कार्यक्रमों का विवरण। प्रातः के 6:45 हुए हैं। समय उजला है कार्यक्रम खेती में बात का।
1: खेती री बात कार्यक्रम हमारे द्वारा सब भाइयों ने सौर ऑडियो वालजी भाई ने राम राम किसान भाइयों आज आप हवार हवार में बात करेंगा। कृषि में गोबर खाद नो हो महत्व है तो किसान भाइयों खेती में गोबर नो खाद घणो उपयोगी है ने एनो खास महत्व भी है क्योंकि आ मिट्टी की गुणवत्ता जल धारण क्षमता ने वायु संचार में भी हुदा रहे जेने थे कि फसल नी पैदावार भी बढ़े है आ लाभकारी सूक्ष्म जीवों ने भी बढ़ावो अले है ने पौधों ने आवश्यक तत्वों में भी बढ़ावो अले है। सप्तकी की मोटी बात के आ मिट्टी ना कटाव ने कम करवा में भी मदद करे है। किसान भाइयों मिट्टी हारू भी लाभ नी बात करो तो आ जैविक पदार्थ ने बढ़ावो आले गोबर नी खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी वधावे है जेने थे कि मिट्टी नी उर्वरकता ने संरचना में भी हुदार थाय है। जल धारण क्षमता में आ मिट्टी नी जल सोखवा ने धारण करवानी क्षमता वधारे है ने पानी नी बचत करवा में भी सहायक है। किसान भाइयों पौधों हारू लाभ नी बात करो तो आ आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा में प्रदान भी करे है। जड़ों ना विकास में भी आ मदद करे ने एने हाते आ पौधों ना संतुलित विकास में भी सुनिश्चित करे है। किसान भाइयों गोबर नी खाद ना बीजा भी घना अन्य लाभ हैं जिनके आज जैविक गतिविधियों में

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं तारामणि व साथियों द्वारा गाए कुछ कृष्ण भजन।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज और AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत। इसी गीत के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है वातायन। इस कार्यक्रम में आज आपको सुना रहे हैं अमित शाह से व्यंग वार्ता। शीर्षक है घमन का वायरस।
1: आज की इस प्रस्तुति में हम ऐसे संक्रमण की चर्चा करेंगे जिसने दुनिया में सबसे तेज फैलकर चिकित्सा विज्ञान को भी उलझा दिया है, और वो है घमन का वायरस। न कोई वैक्सीन, न कोई मास्क, न कोई टेस्ट किट, फिर भी ये पकड़ में आ जाता है। चेहरा देखिए, लहजा सुनिए, रिपोर्ट अपने आप पॉजिटिव। किसी को अपनी दौलत पर घमन, किसी को अपने पद पर, कोई अपनी आवाज को कृपा मान बैठा तो कोई रोज आईने से कहता तुमसे सुंदर कोई नहीं। वैज्ञानिक भी गिनती छोड़ चुके हैं, क्योंकि घमन के वेरिएंट लैब में नहीं जीवन में विकसित होते हैं। पद घमन वेरिएंट कुर्सी मिलते ही आदमी से ऊपर होने का भ्रम पाल लेता है। एक ज्ञान घमन का वेरिएंट भी है, जिसमें व्यक्ति मान लेता है कि उसकी समझ ही अंतिम सत्य है। रूप घमन वेरिएंट, जहां कैमरा सामने आए और मुस्कान घमन की पोज बन जाए। दौलत घमन वेरिएंट एक अलग ही है, जो इंसान को यह भ्रम देता है कि नोटों की नीयत से भी खरीदी जा सकती है। और एक नया वेरिएंट भी आया है, जिसे लेखनी का वेरिएंट कहा जा सकता है, जो आजकल बहुत चल पड़ा है। इस लेखनी के वेरिएंट में लेखक सोचता है कि कलम से समाज हिल रहा है, जबकि रीडर पन्ना पलटते ही जम्हाई ले रहा होता है। समय बदल गया है और घमन आधुनिक हो गया है। पहले बोली में दिखता था, अब स्टेटस और प्रोफाइल फोटो में। पहले झुकना संस्कार था, अब फोटो खींचाना ही एटीट्यूड बन गया है। परिणाम चाहे जो भी हो, नतीजा एक ही है, घमन बढ़े तो इंसानियत घटती है। अगर घमन कोई उत्पाद होता तो गारंटी कार्ड के पीछे लिखा मिलता, इस्तेमाल के बाद बुद्धि का हास तय है। आदमी की आदि परेशानियां बहानों से भी ढक जाती है। बात करने की एक अलग ही कला होती है, जो बिना सीखे हर इंसान में जन्मजात होती है, और वह है बहानों की कला। बहाने न हो तो लोग असफलता के बोझ से ही टूट जाए। हर टली हुई योजना, हर रुका हुआ काम, हर अधूरी खरीद, सबके नीचे बहानों की मोटी परत लगी मिलती है। जैसे हाल ही में ख्याल आया गाड़ी ले ली जाए, सुना कि कीमतें गिरी है, शोरूम पहुंचे तो बात सही भी निकली, पर फिर भी 8 लाख तो देने ही पड़ेंगे। अब 8 लाख का डिस्काउंट कोई सरकार थोड़ी देगी। सोचा लोन ले लेते हैं, कभी बेटा सनरूफ पड़ गया, समझाया बेटा बेवजह ऊंचाइयां दिखाने से कभी कभी बंदर भी सिर पर चढ़ जाता है। किसी तरह राजी किया तो पता चला जो मॉडल पसंद आया था उसका नया मॉडल लॉन्च होने वाला है, बस खरीदारी अपने आप पोस्टपोन। अब इसमें गलती किसकी? दुनिया के अधूरे सपनों की जड़ में या तो ईएमआई है या अपडेटेड मॉडल। बहाने सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं, नौकरी के इंटरव्यू तक भी फैले हैं। कोई इंटरव्यू देकर आया और मोहल्ले में घोषणा सिलेक्शन हो गया, पर रात की शिफ्ट थी इसलिए मना कर दिया। असलियत न इंटरव्यू से हुआ, न जवाब देने आता था, पर बहाना इतना मजबूत कि पड़ोसी भी भावुक, सही किया, रात में नौकरी कौन करे। दरअसल बहाने इज्जत का सेफ्टी एयरबैग है, हर स्तर पर चले आते हैं। योजना अधूरी है तो पहले वालों की गलती थी, सड़क टूटी है तो बारिश ज्यादा थी, हम भी कम नहीं, दूध फटे तो फ्रिज बंद था, काम न बने तो नेट स्लो था, और वोट न डाले तो लाइनें लंबी थी। सच में बहाने हमारे चरित्र का सनरूफ है, ऊपर से सांप और नीचे असलियत ढकी हुई, और शायद यही वजह है कि हमारी इज्जत आज भी चालू हालत में है, वरना बिना बहानों में कोई भी किसी को भी मुंह दिखाने लायक न बचे। आखिर में बस एक पंक्ति जिसे सुनकर हर आदमी अपने दिल में मुस्कुराएगा, इच्छा तो बहुत थी पर टाइम ही नहीं मिला। खैर अब चलते हैं स्टेटस की दुनिया में।

आज अगर किसी की लोकप्रियता मापनी हो तो उसका व्हाट्सएप, उसका फेसबुक या फिर उसका वह चमचमाता स्टेटस देख लीजिए। बैकग्राउंड में किसी फिल्म का भारी भरकम डायलॉग, सामने खुद का स्लो मोशन वीडियो और ऊपर लिखा हम वही करते हैं जो दिल कहे दुनिया नहीं। ऐसे स्टेटस देखकर लगता है मानो दुनिया का पूरा भार इन साहब के कंधों पर ही टिका हो। एक पोज बदला, 5 इमोशन बदले, 10 सेकंड का वीडियो और 100 किलो का एटीट्यूड। अब तो भक्ति भी स्टेटस फ्रेंडली हो गई है। मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान से पहले मोबाइल कैमरा सक्रिय हो जाता है, सिर झुकाने से पहले कुमेरा को झुका दिया जाता है। ऐसे ऐसे भावुक वीडियो बनते हैं कि लगता है कभी भगवान खुद कमेंट कर देंगे, दर्शन अच्छे थे बेटा, अब चाहे तो कोई मांग भी ले। भगवान भी सोचते होंगे चलो कोई अपने मन से में नहीं आया, भर फॉलोअर्स के लिए ही सही, आदि भक्ति तो पूरी हो गई। पहले लोग डायरी में मन की बातें लिखते थे, उन शब्दों में सच्चाई होती थी, संकोच होता था, थोड़ी शर्मिंदगी भी कि कोई पढ़ न ले। अब वही भावनाएं कैप्शन में बदल गई, खुली धुली हुई और लाइक की भूख में पगी हुई। पहले लोग आईने में चेहरा देखते थे बिना फिल्टर बिना बनावट, अब कैमरे में फिल्टर लगा व्यक्तित्व निहारते हैं। फोटो खींचने से पहले चेहरे के विचार बदल जाते हैं। और दिलचस्प बात ये, जो असल जिंदगी में किसी को आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाते हैं, वह सोशल मीडिया पर लोगों की नजरें झुकवाने में माहिर होते हैं। कभी कभी मन पूछता है अगर ये स्टेटस न होते तो लोग अपना दम, अपना मूड और अपनी शोहरत किसे दिखाते, क्योंकि आजकल ऑनलाइन रहना जरूरी हो गया है, उपस्थिति रहना जरूरी हो गया है, क्योंकि ऑफलाइन जिंदगी में शायद देखने वाला कोई नहीं बचा और ये स्टेटस आज की दुनिया की नई पहचान बन गए। साथियों, स्टेटस बुरे नहीं है, बस उनकी जगह बदल गई है। जो दिल की डायरी होते थे अब वो दुनिया की दीवारें बन गए हैं, और जो भावनाएं निजी होती थी वो पब्लिक प्रॉपर्टी। तो अगली बार कोई दमदार स्टेटस देखे एक पल ठहरिएगा, हो सकता है वो किसी की खुशी नहीं सिर्फ उसकी खामोशी को ढकने की कोशिश हो। इसी सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ताजा व्यंग है, मैं आपको बताना चाहूंगा, और जो एक ताजा अनुभव भी है और एक हकीकत भी है, सच्चाई पर आधारित है ये। संभल कर चलिए यमराज तो तैयार बैठे हैं। बात अभी अभी है, मैं सुबह सुबह युवांश को स्कूल छोड़कर लौट रहा था कि एक ट्रक ने मेरी बाइक को ऐसे ठोकर मारी जैसे जैसे बचपन से ही सपना था कि किसी दिन सड़क पर दौड़ते दौड़ते एक आदमी की सांसें रोक दे। शुक्र है ईश्वर ने टाइमिंग ठीक रखी, नहीं तो ट्रक वाले की महत्वाकांक्षा पूरी हो जाती। यह घटना अपने आप में कम अद्भुत नहीं थी, पर असली कमाल तो मेरे विचारों का था। ठीक उसी समय मैं एक व्यंग्य सोच रहा था उन तेज रफ्तार वीरों पर जो सड़कों को ओलंपिक ट्रैक समझकर दौड़ते हैं। दो दिन पहले ही सड़क पर एक दिलचस्प किस्सा हुआ। मैंने कार में सफर कर रहा था और सामने वाली कार ऐसे कोशिश कर रही थी जैसे वह ट्रैफिक नहीं ओलंपिक क्वालिफायर चल रहा हो। मेरे चालक साथी को मैंने कहा भाई धीमा चलाओ, जाने दो उस भाई को, कहीं सुबह सुबह उसकी पदक तालिका न बिगड़ जाए। वह आगे निकला भी और कुछ मीटर बाद गाड़ी साइड में खड़ी कर दी, ऐसा खड़ा हुआ जैसे विश्व रिकॉर्ड बनाकर अभी अभी मीडिया से बातचीत करने वाला हो। इसी दृश्य को ध्यान में रखकर शीर्षक मेरे दिमाग में आया संभल कर चली यमराज तैयार बैठे हैं, और ईश्वर शायद ऊपर से मुस्कुराकर कह रहे होंगे बेटा तुम तो सिर्फ सोच रहे हो, मैं आधे अधूरे विचारों पर भी व्यवहारिक प्रशिक्षण देता हूँ, पहले ये समझ लो फिर कलम उठाना। दूसरा चमत्कार यह था कि सुबह एक सपना आया था जिसमें किसी व्यापारी से मिलना हुआ और दुर्घटना कहाँ हुई, उसी व्यापारी की दुकान के सामने। ऐसे सहयोग अगर फिल्मों में दिखा दिया जाए तो दर्शक कह देंगे अरे छोड़ो इतना भी ओवर मसाला मत डालो, लेकिन जीवन निर्देशक बड़ा चतुर है, वो ड्रामा भी देता है और मैसेज भी, वह भी बिना टिकट के। और सड़क पर चलने वालों की बात, वे इतने सिद्ध होते जा रहे कि अगर यमराज खुद घोड़े पर उतर कर सलाह देने आ जाए तब भी लोग हॉर्न बजाकर कहेंगे हटो भाई रास्ता रोको मत जल्दी पहुंचना है। दुर्घटना के बाद ट्रक वाला अपने वाह में था, सड़क अपनी धूल में थी और मैं अपनी किस्मत पर हंस रहा था। आखिर इतना बड़ा प्रैक्टिकल किसे मिलता है अपने ही व्यंग का। अब तो लगता है कि पीछा छुड़ाना मुश्किल है, व्यंग भी लिखना है और सड़क पर अपना अस्तित्व भी बचाना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है अगर जल्दी में है तो जरा धीरे चलिए, यमराज कहीं नहीं गए हैं, बस आजकल फास्ट फॉरवर्ड मोड में है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि एक्सीडेंट के ठीक बाद मैं सड़क के किनारे खड़ा सोच रहा था आखिर हम लोग सड़क पर चलते कैसे हैं, जैसे किसी ने जन्म प्रमाण पत्र पर ही लिख दिया गया हो कि बेटा बेड़ा होकर तू ट्रैफिक का उस्ताद बनेगा। कोई हेलमेट को सिर सजाने की चीज समझता है, कोई मोबाइल को रियर व्यू मिरर की जगह लगा देता है, कोई मानो रोज अमरा से रेस लगाकर जीत रहा हो। और इनसे भी हर एक का पूरा भरोसा रहता है कि हादसे किसी और के साथ होते हैं, हम तो सिर्फ सस्पेंस बढ़ाने के लिए सड़कों पर निकले हैं। इससे आत्मविश्वास का लेवल देखिए, अगर सड़क पर 2 सेकंड रुक जाए तो लगता है उनके सम्मान पर हमला हो जाएगा।

आप सुन रहे थे अमित शाह से व्यंग वार्ता कार्यक्रम वातायन में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। जंजीर फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, बोल गुलशन बावरा के हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम हेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम का अगला जो गीत है हसीना मान जाएगी, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, बोल हैं अख्तर रोमानी के।

प्रोफेसर फिल्म का ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल, संगीत शंकर जयकिशन का। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं जबक फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। प्रेम धवन के बोल, संगीत है चित्रगुप्त का।

लीजिए अब सुनिए बरसात फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

बावरे नयन फिल्म का ये गीत आपने सुना, गीता रॉय और मुकेश की आवाजों में, केदार शर्मा के बोल और संगीत रोशन का। इस गीत के साथ ही आज का हम ही रही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: देना साथ मेरा ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल आरएन रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत डीआईजी रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
4: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सीईओई और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें

0: करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों के जय।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से

0: चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रुपए, राजगीर के लिए 4000 रुपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रुपए और कैमूर के लिए 6000 रुपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम

0: नेपाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ दिन से।

कार्यक्रम कुछ दिल से को लेकर उपस्थित हूं आपके समक्ष आपकी रेडियो होस्ट अपूर्वा श्रीमाली। दोस्तों, हर सुबह हमारे सामने एक नया पन्ना लेकर आती है, एक ऐसी शुरुआत जहां हम तय करते हैं कि आज हमें अपनी जिंदगी की किताब में क्या लिखना है। और जब बात जिंदगी की हो तो कुछ ऐसे मूल्य, कुछ ऐसे आदर्श होते हैं जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन करते आए हैं। आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम कुछ दिल से में हम ऐसे ही एक महामंत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो सिर्फ पत्थरों पर खुदा हुआ एक वाक्य नहीं है बल्कि हमारे देश की आत्मा है। जी हां श्रोताओं, आज का हमारा विषय है सत्यमेव जयते।

हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। छोटे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है, हम उस देश के वासी।

सत्यमेव जयते नानरतम, यानी सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। यह शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले श्रोताओं क्या आता है? हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक, सारनाथ के अशोक स्तंभ के शेर और उससे ठीक नीचे देवनागरी लिपि में गर्व से लिखा हुआ सत्यमेव जयते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वाक्य कहां से आया है? तो श्रोताओं, हमारे उपनिषदों में से एक मुंडकोपनिषद से इस पावन मंत्र को लिया गया है। भारत की आजादी के बाद जब हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे, तब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से इस कालजयी वाक्य को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था।

भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जन

कार्यक्रम कुछ दिन से में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे सत्यमेव जयते की। यह सिर्फ मुंडक उपनिषद से लिया गया एक श्लोक या एक सरकारी नारा नहीं है, यह जीवन जीने का एक नजरिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी प्रैक्टिकल दुनिया में क्या सच बोलना वाकई काम आता है। कभी कभी लगता है झूठ बोलने वाले आगे निकल रहे हैं और शॉर्टकट लेने वाले कामयाब हो रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए, झूठ की इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसकी नींव हमेशा कमजोर होती है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो जो मन का सुकून होता है ना, वो कहीं खो जाता है।

श्रोताओं, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की आवश्यकता नहीं होती। नदियों को बहने के लिए किसी पथ की आवश्यकता नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की आवश्यकता नहीं होती। इतिहास गवाह श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र से लेकर महात्मा गांधी तक जिन्होंने भी सत्य का रास्ता चुना, मुश्किलें उनके सामने आई, पहाड़ जैसी चुनौतियां आई, लेकिन अंत में जीत भी उन्हीं की ही हुई। कहते हैं, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं।

झूठ बोलना एक कर्ज की तरह है, जो थोड़ी देर के लिए आपको खुशी तो देता है, लेकिन बाद में उसका ब्याज चुकाते चुकाते इंसान टूट जाता है। वहीं सच एक इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की तरह

है। शुरुआत भले ही थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन जीवन भर इसका रिटर्न यानी सुकून मिलता रहता है। तो बस इसी खूबसूरत सोच के साथ आज के दिन की शुरुआत कीजिए। आज पूरे दिन में एक बार भी जब आपको लगे कि झूठ बोलकर काम आसानी से निकल सकता है, वहां रुकिएगा, सच का साथ दीजिएगा। खुद से आंख मिलाने का जो हौसला और सुकून आपको मिलेगा, वो दुनिया की किसी भी कामयाबी से बड़ा होगा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ दिल से। इसी गीत के साथ ही यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 8:45 हुए हैं। समय चला है कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत का।

अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये राजस्थानी गीत कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। प्रातः के 9 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: कम करने की दिशा में लगातार प्रयासरत। बालोतरा जिले में सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने से अधिकतर हिस्सों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य जल संसाधन क्षेत्र में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत करना और प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना है। सम्मेलन के दौरान जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं, बांध सुरक्षा, जलाशय प्रबंधन, राज्य जल सुधार ढांचे, सिंचाई जनगणना और कैच द रेन अभियान सहित कई प्रमुख विषयों पर चर्चा होगी। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन भी आज से शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रहे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वे लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सके। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। मंत्रालय के अनुसार पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। जिला स्तर के विजेता राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करेंगे। वहीं राज्य स्तर के विजेताओं को 12 और 13 अगस्त को राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में आमंत्रित किया जाएगा। माय भारत 5 रचनात्मक श्रेणियों, नृत्य, संगीत, रील और लघु फिल्म, नुक्कड़ नाटक और कविता में प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा है कि राज्य सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में लगातार प्रभावी प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को मातृ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी प्रोटोकॉल की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित करने और उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक मातृ मृत्यु अत्यंत संवेदनशील विषय है और राज्य सरकार हर मामले की गंभीरता से समीक्षा कर रही है। मंत्री ने बताया कि भीलवाड़ा और बांसवाड़ा में हाल ही में प्रसूताओं की मौत के मामलों की निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत जांच कराई जा रही है। अब तक की जांच में चिकित्सकीय लापरवाही का कोई स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आया है। श्री खेवसर ने कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या प्रोटोकॉल के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ने हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल का कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी विभाग 2000 से अधिक मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी सफलतापूर्वक करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर डॉ अनिल शर्मा ने बताया कि ये आधुनिक तकनीक पारंपरिक ओपन हार्ट सर्जरी की तुलना में कम दर्द, कम रक्तस्राव, तेजी से स्वस्थ होने और बेहतर परिणाम के लिए जानी जाती है। इस तकनीक से मरीजों को कम समय में अस्पताल से छुट्टी मिलती है और सामान्य जीवन में जल्द वापसी संभव हो पाती है। उन्होंने इसे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।
1: हमारे हिंदुस्तान में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जो ये ऑपरेशन हो रहे हैं, ये हमने यहाँ पर 32 तरह के ऑपरेशन कर दिए, जबकि सारी दुनिया में 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 5 तरह के ऑपरेशन होते हैं जिसमें भी जान पे चीरा लगाया जाता है। हमारे यहाँ हमने 2000 ऑपरेशन कर दिए कुल मिला के मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी में, जिसमें हमने 32 तरह के अलग अलग ऑपरेशन किए हैं और हमारे सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हैं और हमारी सक्सेस रेट करीब 99.5% है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं।

0: बालोतरा के पास देर रात हुए एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा भांडियावास के पास हुआ, जहां एक एसयूवी आगे चल रहे डंपर से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 घायलों ने जोधपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना में घायल 3 लोगों का जोधपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर पचपदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए 310 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना पर काम चल रहा है। परियोजना के तहत पुराने कचरे का बायो माइनिंग तकनीक से निस्तारण किया जाएगा और इन स्थानों पर आधुनिक वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होगी। परियोजना के तहत 152 नगरीय निकायों में लगभग 75 लाख घन मीटर लेगेसी वेस्ट का निस्तारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत जीरो डंप साइट के राष्ट्रीय लक्ष्य को गति देना है। इधर राज्य के विभिन्न जिलों में स्वच्छता के क्षेत्र में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। पाली जिले में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-2026 के तहत सोजत नगर पालिका द्वारा मुख्य मार्गों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों की दीवारों को आकर्षक कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाली संवाददाता।
1: राजस्थानी संस्कृति के तहत ऊंट, मांडना, हिरन और विभिन्न वन्य जीवों की कलाकृतियों के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। पेड़ पौधों और हरियाली की पेंटिंग से आमजन को पौधरोपण के प्रेरित कर रही है। वहीं दीवारों पर गीला कचरा, हरे डब्बे में सूखा कचरा, नीले डब्बे में जैसे चित्रों के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक और खुले में कचरा नहीं फैलाने का संदेश दे रही है। साथ ही अब यह पेंटिंग आकर्षक सेल्फी पॉइंट बन रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देते हुए पदोन्नति प्रक्रिया को सरल बनाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-2025, 2025-2026 और 2026-2027 के लिए पदोन्नति हेतु आवश्यक अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा। श्री शर्मा कल जयपुर में सचिवालय सेवा अधिकारी और सचिवालय कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ गया है, इससे अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने और बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि आगामी 2 दिनों तक बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन धूल भरी तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान में भी अगले 5 से 6 दिन अधिकांश स्थानों पर मॉनसून कमजोर रहने के आसार हैं। जयपुर, भरतपुर और शेखावटी क्षेत्र में आज से 15 जुलाई के दौरान कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलौदी में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों के जल संसाधन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों का अखिल भारतीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कहा, राज्य सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने की दिशा में लगातार प्रयासरत। बालोतरा जिले में सड़क हादसे में 5 लोगों की मृत्यु, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने से अधिकतर हिस्सों में आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:10 हुए हैं। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई कुछ गजलें।

भूपेंद्र सिंह की आवाज में सुन रहे थे आप ये गजल कार्यक्रम सुगम संगीत में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदे नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिरिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
2: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी, हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
2: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अश्वता, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
2: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन दीजिए।
2: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IVRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।

0: इंस्टा, फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: अरे भागो भागो, वो देखो हमारे
3: आगे पशु पक्षी का क्या हो गया, हमारे घर के सारे सामान बह
2: गया। अरे हो गई है क्या, हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
4: फसल बह गई।
5: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था, नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी, नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
6: लो भाई पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
4: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत। आहा,
6: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। आहा, कितना साफ पानी है।
5: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी, लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है, नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
7: अरे काट काट काट, मेरा भी क्या देख रहा काट।
8: अरे मैंने आज सब पेड़ काट डाले।
5: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस

0: महसूस कर रही थी।
1: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
2: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
3: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, सस्ते क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
4: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं
2: और पैसे कमाने हैं।
0: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते
5: उफ़ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
6: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
1: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेगी इस गर्मी ने।
0: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
7: हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा,
8: लगता है नदी प्रदूषित हो गई है।
9: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
8: सारी फसल बह गई।
7: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान
8: धीरे जल्दी से
7: ऊपर ले जाना होगा।
8: चलो जल्दी ऊपर,
7: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी, चलो
8: चलो चलो,
7: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
8: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हां साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
1: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी तुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कलकल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहु ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
10: अभी आप सुन रहे थे कक्षा

कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीष शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है एक गांव की कहानी।

0: ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवार जनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं,
1: मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहाँ निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ।
1: अरे चाची,
2: हाँ,
1: यहाँ आकर तो देखो।
2: हाँ हाँ,
1: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
2: हाँ,
1: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
2: हाँ हाँ,
1: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
3: अरे ओ रेवती,
1: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
1: किन्दौरी।
3: हाँ चाची।
1: और
4: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ।
1: हाँ प्रसन्नी,
4: अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
2: हाँ चाची।
5: क्या है चाची?
4: अरे
5: क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है री।
5: हाँ?
4: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
5: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
4: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं।

0: बड़े बड़े 7-8 छत्ते लगे हैं। हाँ,
1: 7-8 छत्ते, कमाल है। अरे फिर तो मजा आ गया।
2: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो 2 गगरी फिर तो हो ही जाएगा।
1: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
2: चप्पल फाड़ पाएगा।
1: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं। क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दांतों से तोड़ लेंगे।
2: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
1: चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल च

0: ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
1: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।
2: वो देखो ना। अरे हाँ, वो सांड के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो
2: खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथ में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते। अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है?
2: और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं। अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकनी है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: मगर ये औरतें और बच्चे
2: को यहाँ मगर मत कर। क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: बचाएंगी,
2: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है?

0: फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
1: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं,
2: बिल्कुल
1: इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें। लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है। अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो।
0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
3: चिब्बू भाग ले यहाँ से,
4: भाग ले, बाद में काटेंगे।
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
5: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया। ऐसी चिपकी पेड़ से कि थोड़े ही पेड़
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को,
0: कुसुमलता,
6: जगबंधु,
0: चेतना
6: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
6: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
7: जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी

0: पुत्री रीमा अमरापुरकर आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं सदाशिव अमरापुरकर जी की, पूरी यात्रा जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
2: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
1: सजा।
2: सजा किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूं, अगर मैं जो कहता हूं, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूं, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनिंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो, ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
1: बिल्कुल,
2: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे, ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो

0: था, लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे।
1: बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
0: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना, और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत।
0: यस,
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं। सो, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: काम, और उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और निरुभाव ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर, तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। सो, ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार, पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिले वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागले जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स, अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
0: विरोध करेगा,
1: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
0: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है, और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
1: करेक्ट। सो पापा

0: पा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
1: गजब।
0: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
1: वो आराम से बेच सकते थे पैसे।
0: हाँ, बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त म्हाड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे म्हाड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे,
1: आज भी मौजूद है
0: और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं, उधर डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा। बिकॉज जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल,
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन
0: है, बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
1: बिल्कुल। रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
0: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दम सांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे कमजोर होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो, आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते
1: अगर बिल्कुल, बिल्कुल।
0: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे, और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है, इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रांग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू
0: एक्चुअली और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूँ।

तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त कि लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेज।

0: ये होना ही नहीं चाहिए।
1: हाँ,
0: कोई भी रीजन हो नहीं,
1: और नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
0: बिल्कुल।
1: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन, ही इज द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री,
0: राइट,
1: और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
0: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं।
1: Exactly.
0: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए,
1: बहुत,
0: और
1: बहुत
0: लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़ देना चाहिए ऐसे समय।
1: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी।
0: ओहो।
1: और वो लाइन रुकी नहीं रही थी। अल्टीमेटली 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस, अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
0: दूर दूर से आए,
1: दूर दूर से आए थे। और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने हैं, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त, और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो। कोई ना कोई वो याद निकालता ही है, और हर एक 2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
0: गजब।
1: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं। वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं, और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
0: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
1: एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वॉज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखें, उसके कई मायने हैं, और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
0: क्या बात है।
1: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक एक एक एक एक आप पूछते गए, तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
0: बिल्कुल।
1: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें रुकना चाहिए।
0: यहाँ एक गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

0: रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना,

0: और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ। हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई, और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं।
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की। वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें।
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये।
0: हाँ, और उसके बोल है मेरे दिल में है इकबाल।

0: और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ, हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए है, महाराष्ट्र को दिए है। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसलिए शायद आप विलन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं, नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी,
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे।
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे?
1: जी जी जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
0: तो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
0: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगी।

खा गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आए।

0: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था, इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो मैं, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सले करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं मैं,

0: मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो ले।
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी।

0: तो ये सदाशिव जी की आवाज देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या है आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हूं, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूं कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूं कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूं वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूं कि ये आजादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है, ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूं कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूंगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज कुछ न कुछ ऐसा याद आता है, कुछ न कुछ ऐसा मिलता है, आपके कोई मीम हो या कोई रील हो, कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफी बार हम काफी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
0: क्या बात है रीमा जी, पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था, जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
1: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोखले इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ और तब जाके मैंने राशोमान देखी, अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा,

0: ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले। सर मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? वो एकदम ऑफेंड हो गया कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे। तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी। ओके
1: राइट।
0: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है। फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना। पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझमें भी है, तो मैं एनजीओज के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ।
1: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था, तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है। तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच। ऐसे होता है ना कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं, पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन किस्से घटनाएं और पापा उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस।
1: थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 11 बजे लीजिए पेश है गैर फिल्मी नगमों व गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुना रहे हैं अशोक खोसला द्वारा गाई कुछ गजलें।

आप सुन रहे थे अशोक खोसला द्वारा गाई गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में। इसी साथ ही ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 11:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रेया घोषाल और केके की आवाज में सुन रहे थे आप ये गीत फिल्म साया से। संगीत था अनु मलिक का, शब्द रचना सईद कादरी की थी। अगला गीत आपको सुना रहे हैं मुकेश की आवाज में, फिल्म है संबंध।

रविंद्र जैन के गीत संगीत और आवाज से सजे इस नगमे को आप सुन रहे थे फिल्म अखियों के झरोखे से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं बंदनी से, आवाज है मुकेश की। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है एसडी बर्मन ने।

0: मन्ना डे के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।
1: का पहला एक्सप्रेसवे है, इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिन्दी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा

में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देशभर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सीमा फिल्म का गीत। मन्नाडी की आवाज में शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ब्रेक पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था फिल्म अखियों के झरोखों से, हेमलता की आवाज और गीत संगीत था रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में अमृत फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म रजिया सुल्तान से। जानिसार अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं, खयाम का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम पर्वत। इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, बोल हैं जानिसार अख्तर के, धुन बनाई है जयदेव ने।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। गीत गाता चल इस फिल्म से आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजें हैं। गीत संगीत रविंद्र जैन का।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, हम जानते हैं आपको इंतजार होता है इस कार्यक्रम का, ताकि आप भी हमसे जुड़ सके, शामिल हो सके इस कार्यक्रम में और अपनी टिप्पणियों के जरिए अपनी दिल की बातें साझा कर सके। तो आइए आज की इबारत की ओर आपको लेके चलते हैं। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि हम एक इबारत पढ़ते हैं और उस इबारत को लेकर उस इबारत में से आपको कुछ शब्द चुनने होते हैं। तो चलिए, जो साथी फेसबुक पर जुड़ चुके हैं वो तो ठीक ही है, वहां पर कमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन यदि कोई साथी नहीं जुड़ पाए हैं तो आपके लिए एक बार हम ये आज की इबारत पढ़ देते हैं और आपको इस इबारत में से शब्दों को चुनना है और बताना है कि आज कौन से गीत और किन शब्दों के गीत हो सकते हैं। आज की इबारत है, जीवन की ज्योति तब तक उजली रहती है जब तक संवेदनाओं की पुकार सुनाई दे। चंदन की तरह शीतल रहकर किसी के साथ की कीमत को समझना ही सागर जैसी गहरी सोच की निशानी है। झूठ क्षणभर का सहारा दे सकता है, लेकिन मन को

सच्ची शांति नहीं देता। दिल हमेशा ही गैरों में अपनापन ढूंढता है। कुछ तस्वीरें सिर्फ यादों में जीवित रह जाती है और फिर रूह की वो जलन, काया की हर तपन इंसान को पहले से और अधिक मजबूत बना जाती है। तो इस इबारत को आपने सुन ही लिया है, आपको बताना है कि आज के शब्द कौन से हो सकते हैं। चलिए पहले गीत की ओर हम बढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको एक हमारे साथी ने लिखी हुई बात बताते हैं। एक साथी ने लिखा है, पूरी इबारत को एक भाव में देखा जाए तो इसका संदेश है कि जीवन में सच्चाई, संवेदनशीलता, रिश्तों की अहमियत और संघर्षों से मिली मजबूती ही इंसान को परिपक्व बनाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि यही चीजें हैं जो इंसान को और निखरने में और परिपक्व बनने में और मजबूत बनने में सहायक होती हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले गीत की ओर। भाभी की चूड़ियां इस फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर की आवाज, नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा है, सुधीर फड़के का संगीत।

जी हाँ, तो आप में से कई साथियों ने बिल्कुल ये गीत सही पहचाना था और ये शब्द था ज्योति। एक साथी ने लिखा है कि सच कहूं तो सुरीला सफर इस कार्यक्रम की वजह से हमारी बातचीत भी एक प्यारे सफर जैसी बन गई है। हर दिन कोई नया शब्द, कोई पुराना गीत, कोई मीठी याद और कुछ दिल से निकली बातें, यही इसकी सबसे सुंदर बात है।

हम सब श्रोता मिलकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, एक परिवार की तरह से बैठकर अपनी बातें कहते हैं, उससे ही तो इसकी खूबसूरती है। और साथ में जो गीत बजते हैं वो सबसे प्यारा साथ होता है होस्ट का। जी हाँ, जब हम और आप इस तरह साथ होते हैं हमें भी बड़ा अच्छा लगता है आपकी टिप्पणियां पढ़कर, और लगता है कि हाँ हमारी बात सुनने वाला भी उतनी ही रुचि के साथ हमसे बात कर रहा है। एक साथी ने लिखा है, हमारी इबारत पे से इन्होंने लिखा है, संवेदनाएं शब्दों में नहीं हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी नहीं टूटता। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देते हैं और संबंधों को गरिमा देते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है, जब संवेदनाओं की बात हो रही है तो आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी याद को साझा कर सकते हैं जब आपने अपनी संवेदनाओं को पूरे हृदय से महसूस किया हो। और तब तक आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म खामोशी से। हेमंत कुमार के ने इस गीत को गाया है, गुलजार के बोल है और हेमंत कुमार का संगीत।

हाँ तो भाई, किसी ने लिखा था कि पूरा गाना आखिरी तक बजाना विसिल के साथ, विसिल के तक। तो लीजिए, आपने जैसा कहा था पूरा विसिल तक आपको गाना सुनवाया है। एक साथी ने लिखा है, जीवन में कुछ तस्वीरें समय के साथ कभी धुंधली नहीं पड़ती, वे यादें यादों की दीवार पर हमेशा टंगी रहती हैं। कुछ बिगड़ने, कुछ अधूरे सपने और कुछ अनकहे एहसास मन को तपाते हैं, लेकिन यही तपन इंसान को अंदर से मजबूत भी बनाती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती हैं। एक साथी ने लिखा है, ये इबारत केवल जीवन का चिंतन नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन की उस मौन यात्रा का सजीव चित्रण है, जहां संवेदनाएं ही जीवन का वास्तविक आलोक बनकर मार्ग प्रशस्त करती हैं। संबंधों का सौंदर्य अधिकार में नहीं बल्कि आत्मीयता, विश्वास और निस्वार्थ समर्पण में निहित होता है। जीवन में बिछड़ना, टूटना, छल और विरह जितने भी कठोर अनुभव हो, यदि वे मनुष्य की संवेदनशीलता को जीवित रखें तो वही उसके व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। स्मृतियां समय के साथ धूमिल नहीं होती, वे आत्मा की धरोहर बनकर हमें भीतर से परिपक्व करती रहती हैं। अंततः जीवन की सबसे बड़ी विजय परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने भीतर की करुणा, सत्य और प्रेम को अक्षुण्ण बनाए रखने में है। जी हाँ, और जो पिछला गीत था उसका शब्द था पुकार, और आप में से कई श्रोताओं ने इसे सही भी पहचाना। लीजिए, अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं। सरस्वती चंद्र फिल्म से मुकेश की आवाज में इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

चंदन शब्द था इस गीत से और हमारे एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं सदैव स्वभाव पर हावी होती हैं।

भी मन को कड़ा करें। बच्चे जब दूर कार्य क्षेत्र पर जाते हैं सब्र का बांध टूट ही जाता है। जी हाँ, इस बात को हर वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकता है जो किसी काम के चलते या फिर किसी मजबूरी के चलते अपने परिवार से दूर जा रहा है। और जब व्यक्ति दूर जा रहा होता है तो जाने वाले को लगता है उसका गम बड़ा है, और जो घर पे अकेला रह जाता है उसे लगता है उसका दुख बड़ा है। लेकिन सच मानिए, दोनों अपनी अपनी स्थिति में अपनी अपनी जगह पर बड़ा दुख झेल रहे होते हैं जब वो एक दूसरे से बिछड़ रहे होते हैं। एक साथी ने लिखा है, आज कुछ खास किस्म के गाने बज रहे हैं, अच्छा लग रहा है। संबंधों की पड़ताल करते ये गीत अमर है, इन्हें सुनते बड़ा सुकून मिलता है। आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, गीत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म मेरा साया से, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खान के बोल, मदन मोहन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, सचमुच ही मनुष्य का वक्त गुजर जाता है, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ लम्हे याद रह जाते हैं, कुछ सुकून रह जाते हैं, कुछ संवेदनशीलता होती है जो कि उम्र भर जीने की राह सिखाती है। कभी कभी उन यादों के सहारे भी रोना पड़ता है जो बीत गए हैं। उन पुरानी यादों की गलियारों से रूबरू कराती है विविध भारती परिवार। सुरीला सफर सचमुच विविध भारती का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विविध भारती परिवार सुख दुख की बातें और जीने की राह सिखाती है। विविध भारती को कोटि कोटि धन्यवाद, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिखते हैं, दूसरों के दुख को समझना, महसूस करना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना और करुणा रखना, यही संवेदनशीलता व्यक्ति की पहचान है। संवेदना समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे को बढ़ाती है, यही एक स्वस्थ समाज की नींव है। जीवन में कभी कभी अपने भी गैर लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आता है जब गैर भी अपने लगने लगते हैं, यही सच्चाई है। ये भी एक साथी ने लिखा है और जरूर आपको ऐसा कोई अनुभव आया होगा जिससे आप ये बात कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी अनजान शहर, अनजान जगह पर होते हैं तो कभी कभी कोई इस तरह मदद कर जाता है, इस तरह साथ दे जाता है कि हमें लगता है जैसे ये हमारे लिए भाई समान है, बहन समान है जिसने हमारी इतनी मदद कर दी। तभी तो हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति हमें ईश्वर रूप में मिल गया। ये हम तभी तो कहते हैं जब कोई अनजान व्यक्ति यूं ही हमारी मदद कर जाता है, वो भी बिना किसी अपने मुनाफा के, बिना किसी लालच के। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अभी जो गीत आपने सुना उसका शब्द था साथ। यही साथ तो है जो हमें लोगों से मिलता है जिसके जरिए ये समाज जिंदा रहता है। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और आपको सुनवाते हैं ये गीत अनोखी रात फिल्म से, मुकेश की आवाज में, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत।

0: गर्ल।
1: तो साथियों, मुझे लगता है ये गीत भी आप ही की लिस्ट में से होगा। बहुत सारे लोगों ने इस गीत को भी सही पहचान लिया था। हमारे एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम वास्तव में सुरीला महसूस हो रहा है। आज की इबारत में शामिल शब्दों पर आधारित गाने लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ये लिखते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। सार्थकता तब है जब हम दूसरों के सुख दुख को अपनी अनुभूति से समझें, और ये संवेदना हृदय का स्पंदन है जो हमें मानवता से जोड़ती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण है कि बाहरी प्रकाश यानी कि ज्ञान भी आंतरिक संवेदना रूपी दीपक से ही प्रकाशित होता है। वहीं चंदन की तरह शीतल रहकर संबंधों के मूल को समझना सहज बोध, भावनात्मक परिपक्वता और गांभीर्य का प्रतीक है, क्योंकि चंदन की प्रवृत्ति बिना भेदभाव के सुगंध देने की है। सागर अपनी विशालता और गहराई में सब कुछ समाहित कर लेता है, जो सागर की विशेषता है, जिसे हम प्रज्ञा यानी गहरी बुद्धि या स्थिरता के रूप में जाना करते हैं, जो बिना विचलित हुए रिश्तों की गहराई और उसके महत्व को आंकती है। काफी बड़ी बात इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। आपको बताना है इस गीत का कौन सा वो शब्द है जिससे इस गीत को लिया गया है।

जी हाँ, तो इस गीत से जो शब्द था वो था झूठ, और आप सभी ने सही पहचाना है। एक टिप्पणी अभी मुझे दिखी, एक श्रोता ने लिखा है कि मजाल है कोई भी गीत श्रोताओं की लिस्ट में से बच जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने कोई दूसरा चैनल ट्यून तो नहीं कर लिया है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप विविध भारती ही सुन रहे हैं या कोई दूसरा चैनल आपने गलती से लगा लिया हो, क्योंकि अक्सर जो गीत हमें यहां पर, यानी जो कमेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने सही गीत पहचाना है और वो गीत बज भी रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिए। एक साथी लिखते हैं, इस गीत के लिए दिल से शुक्रिया, पर हमारे घर में आज गेस्ट आए हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, पर जैसे ही ये गीत बजा खुद को रोक नहीं पाए और चाय भी गिर गई। देखिए, ऐसा मत कीजिए वरना आपकी चाय गिरने का सारा दोष विविध भारती पर आ जाएगा। आपने तो लिख ही दिया है सारे आम। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल, अच्छा ये कमेंट तो हमने पढ़ दिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है, आत्मा का संगीत तब तक गूंजता रहता है जब तक हृदय में दूसरों के प्रति करुणा जीवित हो। हिमालय जैसी अटूट स्थिरता और नदी जैसी निश्चल आत्मीयता से किसी के मौन को पढ़ना ही परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। दिखावे और छल से कुछ पल की वाहवाही तो मिल सकती है, मगर अंतरात्मा को कभी संतोष नहीं मिलता। इंसान अक्सर अजनबियों की भीड़ में उस एक आत्मीय स्पर्श की तलाश करता है। कुछ लम्हे वक्त के पन्नों पर धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन उन यादों की तपिश और संघर्षों की हर एक चोट मनुष्य को भीतर से और अधिक निखार कर फौलाद बना देती है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है, इस टिप्पणी को पढ़कर सच मानिए ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी ही इबारत को दूसरे तरीके से लिखा गया हो, इतना मेल खाती ये टिप्पणी है। और चलिए अगले एक गीत की ओर बढ़ते हैं। अनुरोध फिल्म का गीत है, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

देखिए कितनी अच्छी बात कहता है ये गीत। इसका अर्थ कितना अच्छा है कि यदि आप बेसहारा हैं और किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जो तकलीफें आपने सही है उनसे छुटकारा पाने के लिए आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक साथी ने इसी तारतम्य में लिखा है कि महामारी के समय में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उस वक्त मेरे अपने सगे मेरे साथ नहीं आए, लेकिन एक पड़ोसी मेरे साथ आया और मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। इसलिए कहता हूं, कभी अपने ही गैर होते हैं और गैर अपनी जान जोखिम में डालकर मददगार साबित होते हैं। ऐसे शख्स उम्र भर अपने रहते हैं। बिल्कुल, आपने जो अनुभव किया, ईश्वर करे ऐसी नौबत किसी पर ना आए, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में आपका उस व्यक्ति ने साथ दिया है तो सच में लगता है मानो भगवान हमारे सामने आ गए हो, साक्षात भगवान ने ही अपने देवदूत को भेजा हो हमारे लिए। और अभी जो गीत आपने सुना था उसका शब्द था सहारा। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत चित्रलेखा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं शब्दों में नहीं, हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती है। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी टूटता नहीं। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देता है, संबंधों को गरिमा देता है। एक साथी ने लिखा है, जीवन का गणित कोई समीकरण नहीं है कि जब चाहा सुलझा लिया। संवेदना का तत्व जीवन की को ज्योति देता है। जीवन तब तक अधूरा है जब तक इसमें अशांति बनी रहती है, और शांति के लिए ही इंसान तमाम प्रयास आजीवन करता रहता है। जीवन एक प्रयोगशाला है, यहाँ चंदन सी शीतलता है और अग्नि सी दाह भी। जीवन का पूरा सच केवल एक है, इसका पूरा संसार बहुत रहस्यमय है। परिस्थिति कोई भी हो, हमें बस जीते जाना है। और लीजिए, इसी के साथ सुनवाते हैं मौसम फिल्म का गीत, भूपेंद्र की आवाज में, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत। और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था मन, और पहचानिए कि इस अगले गीत का शब्द कौन सा है।

0: फुर्सत के।
1: किसी ने लिखा दिल शब्द है, किसी ने लिखा ढूंढता शब्द है। वाकई इस गीत में दोनों ही शब्द शामिल है, लेकिन हाँ, जिस शब्द को लेकर हमने इस गीत को चुना था वो शब्द है ढूंढता। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कई साथियों ने लिखा है कि ये गाना बहुत ही शांति भरा और सुकून भरा लगता है, अच्छा लगता है। पसंद करने के लिए धन्यवाद। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये सुदास की आवाज में सावन को आने दो फिल्म का गीत। फोक जामी ने इस गीत को लिखा है, राज कमल का संगीत।

हम दिल खोलकर बोल सकते हैं, और यदि कोई बात, यदि कोई नाराजगी हो, कुछ हो, तो हम यहाँ पर साझा करके उसका समाधान भी कर सकते हैं। जी हाँ, यूं ही हल्की फुल्की बातों के साथ आज का सुरीला सफर अब संपन्न करने की दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

तस्वीर शब्द आप सभी ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है कि हमें दुनिया से अलग गांव, यही विविध भारती का प्लेटफॉर्म जहां हम श्रोता रोज मिलते हैं। कितना प्यारा गांव है ये। जी हाँ, ये गांव ही तो है जहां हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये वो मंच है जहां

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में बातें दुनिया की। कहने को तो मात्र तीन अक्षरों का शब्द है दुनिया। छोटा सा शब्द है, लेकिन अपने भीतर अनंत आकाश, अगाध महासागर। ये शब्द दुनिया जहां दार्शनिकों के लिए एक पहेली है, वहीं वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी सी प्रयोगशाला है, और कवियों के लिए उनके लिए भावनाओं का एक बहता हुआ दरिया। हम इस दुनिया में आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये दुनिया अपनी धुरी पर निरंतर घूमती रहती है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है इसका बदलाव। आज जो शिखर पर है, कल एक शून्य हो सकता है। इंसान पूरी जिंदगी चीजें बटोरने में लगा देता है, लेकिन भूल जाता है कि वो इस रंगमंच पर केवल एक मुसाफिर है। अपने बड़ों से हमने ये सुना भी है ना कि दुनिया एक सराय है जहां हम कुछ देर सुस्ताने के लिए रुकते हैं।

0: क्या है?
1: दुनिया केवल मिट्टी और पानी का गोला नहीं है दोस्तों, ये रिश्तों का एक घना जंगल है। यहाँ पर प्यार है, तकरार है, वफादारी है तो धोखा भी है। हर इंसान इस बड़ी सी दुनिया में अपनी अलग एक छोटी सी दुनिया बनाता है, जिसमें उसका परिवार, दोस्त और सपने शामिल होते हैं। आज के समय में हम सब देख रहे हैं कि दुनिया शब्द का अर्थ बदल गया है। अब हम डिजिटल दुनिया के वासी हो गए हैं, जहां हजारों फ्रेंड्स तो हैं, फिर भी इंसान अकेला महसूस करता है। संघर्ष इस बात का है कि हम अपनी बाहरी दुनिया को सजाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आंतरिक दुनिया यानी हमारा इनर वर्ल्ड उसको भूल चुके हैं। लेकिन फिर भी तमाम दुखों और संघर्षों के बावजूद ये दुनिया खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ उम्मीद का दिया हमेशा जलता रहता है।

ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं।

और प्यारे, दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, दर दर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हम

0: ये भी ये भाई
1: क्या है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी को मालिक के करता नहीं बार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिसके पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
0: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
1: माल जिसका खाता है प्यार जिसके पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का डर है। भाई जरा देख के चलो

0: आज की दुनिया बिखरी सी है, सीमाओं में, विचारधाराओं में, लेकिन जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरी दुनिया एक परिवार नजर आती है। विज्ञान ने दूरियां तो कम कर दी है, लेकिन दिलों की दूरी मिटाना अभी बाकी है। दुनिया को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका है प्रेम। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। आप देखिए ना, एक छोटा सा बच्चा दुनिया को कौतूहल और मासूमियत से देखता है, जबकि एक वृद्ध इंसान उसे अनुभवों को पोटली मानकर देखता है। यानी कि दुनिया वैसी है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। दुनिया की विशालता और उसमें मनुष्य की छोटी सी हस्ती को स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। हम सबको इस दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी सुंदर, हरा भरा और सुरक्षित छोड़कर जाना है।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

0: किया हुआ।
1: आज की त्रिवेणी में बातों का सिलसिला बस इतना ही। टीपा माहेश्वरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।

0: जिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कभी बेख्याल होकर रोही चूलिया किसी ने।
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
2: गाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को एसआई का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन

0: 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घट कर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज आईएनएस महेंद्र गिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आईएनएस महेंद्र गिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का तीसरा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केन्द्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे रोज नहीं हुआ, अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की

तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम

0: आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकिनगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रूपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमरीका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं।

0: हैं सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स ने टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। तस्वीर फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। डीएन मधोक ने इस गीत को रचा है सी रामचंद्र का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं सिंदूर फिल्म का गीत, आवाज मोहम्मद अजीज की, आनंद बख्शी की रचना है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ഒരു പുരസകേ.

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्याम चित्तर की। राज कवि इंद्रजीत सिंह और तुलसी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल।

झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं।

Yeah, everyone does.

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सुनने वाले सभी सखियों, श्रोताओं और सखा भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। और

0: ममता जी आपको भी नमस्कार।
1: जी देखिए दीपा, कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियां आती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बस मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कई बार दो राह पे हम खड़े होते हैं तो निर्णय की क्षमता लेने में बड़ी असुविधा होती है, समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, क्या करें। कई बार सड़कों पर भी ऐसा होता है कि हम खड़े होते हैं कि रास्ता राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा, हालांकि अभी गूगल नाम के मास्टर ने बहुत आसानी कर दी है कि आपको मैप के जरिए आप सही रास्ते पर चले जाते हैं, बस कि नेट चल रहा हो आपका। तो ये जो मन जो अधीर हो जाता है, इस मन को साधने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं।
0: बिल्कुल, और इसी बारे में बात भी करेंगे हम ममता जी आज की, क्या किया जाए जब मन बहुत बेचैन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या कभी गलत हो गया है आपके साथ तो हमारे सभी सुनने वाले बताएं कि क्या हुआ था, कभी कुछ गलत उनके साथ हुआ है या कहीं उन्होंने मन को शांत करके फिर बताई है बात, या कुछ ऐसा निर्णय को थोड़ा सा टाला है और बाद में उसको लिया है, ऐसा कुछ अनुभव उनके साथ अगर रहा है तो हमारे साथ अवश्य,
1: मतलब किन परिस्थितियों में वो अधीर हो जाते हैं और किस तरह से वो निर्णय ले पाते हैं अपने जो भी कार्य हैं, तो हमारे श्रोता बताएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर आकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ इसी के बारे में उन्हें नहीं टाइप करना है बल्कि बारिश और लकड़ी के फर्नीचर, ये हमारा अगला मुद्दा है, अगला विषय है जिस पर उनकी टिप्पणियों का हमें इंतजार रहेगा कि बारिश में लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो खराब हो जाते हैं, कई बार दरवाजे तक बड़े टाइट हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, और कहीं पे दीमक लग जाती है, कहीं फूल जाते हैं या कहीं टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीजों को हम देखते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, हम तो यहाँ विचार विमर्श करेंगे, चर्चा होगी, आपको भी क्या लगता है आप वो भी बताइएगा।
1: मैं नहीं, हमारे श्रोता जी। और इसके अलावा जब सुबह सुबह उठते हैं तो मन में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या बनाया जाए, तो इस मुश्किल की आसानी के लिए पराठे, कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, और आप भी बनाती होंगी कई तरह के पराठे, दो चार पराठों के नाम बताइए आप भी।
0: जी, मूली के पराठे होते हैं, फूल गोभी के पराठे होते हैं,
1: पत्ता गोभी,
0: तो पत्ता गोभी की भी थी,
1: लौकी का पराठा भी बनता है,
0: लौकी का भी होता है,
1: प्याज का पराठा
0: जी, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अचार का मसाला लगा के वैसा भी,
1: और सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम श्रोताओं से जानना चाहेंगे पंजाब के भरवा पराठे कैसे होते हैं, अगर उन्हें जानकारी है, अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे पंजाब के भरवा पराठे के बारे में जी, कि कैसे बनते हैं। और कथा सुधा जो हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा भाग सुनवाएंगे दो बहने का, तो फिलहाल एक गाना सुन लें हम।
0: चलिए

ममता जी, पिछले सोमवार को हमने सुना कहानी, प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। इसका हमने पहला जो कड़ी उसकी सुनी थी, आज हम सुनेंगे उसकी दूसरी कड़ी और ये अंतिम कड़ी होगी। तो चलिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं।

0: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। पिछली कड़ी में आपने सुना
1: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है।
2: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया कौन जाने, जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो, उसे ये स्वांग मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ।
1: राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
0: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
2: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है।
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी।
0: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? छानबीन कैसे करेगी, असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी।
2: मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी? यहाँ कौन ईमानदार है, वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाए तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी उसूल परवरी धरी रह जाएगी, और तब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुवत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दूं। रोकना तो दरकिनार, मैं खुश होऊंगी, शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूँ, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी, और जो ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।

0: आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा,
1: इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी। 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लेना, फिर चली जाना, मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी।
0: रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए। बोली,
2: अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ, अभी नहीं।
1: बहन क्या रात भर भी नहीं ठहरोगी?
2: नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी।
1: अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी, मैं कार भेज दूंगी। कार
2: अब खुद कहला दूंगी। हाँ,
1: अरे बहन तुम्हें याद न रहेगा, साल भर तो हो गया, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाए तो चलूं। एक शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो।
2: घर की फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला।
0: इतने में राम दुलारी के शोहर मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वैन हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी न था। दुआ देकर बोली,
2: कैसे हो गुरुसेवक, आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती भला।
0: गुरुसेवक हंसकर बोला,
3: बजा फरमाती है भाई, उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और मैं ना गया, ऐसा हुआ है?
2: शिकायत तो सही है, वैसे मैं ना जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो। कभी भी आओ, वो भी तुम्हारा ही घर है।
3: अब मान गया दीदी, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रहिए।
2: नहीं देखो, राम दुलारी भी कह रही है, लेकिन आज फुर्सत बिल्कुल नहीं है, फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी। लड़के घर पर घबरा रहे होंगे ना, अभी चलती हूँ।
1: मैं तो कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं दीदी।
0: दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरुसेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी।
2: नहीं नहीं, आज आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊंगी, लड़के घर पर घबरा रहे होंगे, फिर आऊंगी।
0: आखिर राम दुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई, रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला,
3: दीदी मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया है, 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा।
2: हाँ, राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, देखो जरा हाथ पर संभाल कर रहना भाई।
3: अब देखिए, मैं मालिक की आंख बचाकर 1 पैसा लेना भी गुनाह समझता हूँ। अब दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे, आप ही बताइए, ईमान खो के पैसे मिले तो क्या।
2: सही कह रहा,
3: ऐसी दौलत पे तो मैं लानत भेजता हूँ, और आंखें किसकी बचाऊं, सब स्याह सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है नहीं। हाँ, उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभालने लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता दीदी। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे।
2: अच्छा,
3: मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था, मुझे 100 रुपए पर रखा और एक ही

0: महीने में 250 कर दिया।
1: अच्छा,
0: आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया।
1: अच्छा, एक बात ये बताओ, काम क्या करना पड़ता है?
0: वही मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना।
1: अच्छा।
2: रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके शोहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी, मगर उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया। बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया और उमानाथ तो मुखातिब ही न हुए।
1: मेरा घर, ये घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा है, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, ये दो चार टूटी कुर्सियां और ये लंगड़ी मेज, चार पांच पुरानी खाटे, बस यही है मेरे घर के बिसात। आज सुबह तक तो इस घर में मैं बहुत खुश थी, लेकिन आप इस घर से मतलब दिलचस्पी न रही।
2: लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन? लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा,
1: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे? मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वही रह जाती, आखिर एक महराजिन क्यों नहीं रख लेते? या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे?
2: उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली। इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ न आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउज्र ही नहीं, खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजिन रख लेने की तजवीज और ख्वाहिश जाहिर की थी, मगर उसने हमेशा यही कहा,
1: अब आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूंगी? हाँ, आप भी चार पांच रुपए का खर्च बढ़ाने से क्या फायदा? और हाँ, ये रकम जो बच रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा, है कि नहीं?
2: वही रूप कुमारी आज इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही है। अपनी सफाई पेश करते हुए उमानाथ बोले,
0: महराजिन रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा है।
1: तो लाकर क्यों नहीं लिया? मैं उसे निकाल देती तो कहते? तुमने कभी सच्चे दिल से कहा? महज महराजिन लाने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहां मिलेगी? महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की जरूरतों से बचे। 75 रुपलियां लाकर मेरे हाथ में रख देते हो और सारी दुनिया का खर्च, मेरा दिल ही जानता है कि मुझे कितनी कतर ब्योत करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं? तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। वो मर्द ही होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान से तारे तोड़कर लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में भी तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है। और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए ये 75 ही बहुत हैं। तुम नाहक ही मत हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूं। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं। तुम्हें तो भाई अच्छे कपड़े भी चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूं, तुम्हारी बला से।
2: यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा और बेचारे उमानाथ

0: प्रकार है रूप कुमारी, रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी, ममता सिंह, उमानाथ, अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी दो बहनें आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।
1: साथियों, आप सुन रहे थे दो बहनें कहानी का भाग दो। इसकी अगली कड़ी आप सुनिएगा अगले सोमवार। और अब सुन रहे हम एक गीत।
2: सुनते हैं।

भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपना हरा ही चला जाए सपनों।

0: चल जाए अकेले कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी तो बुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गाना था और दीपा जी घड़ी की ओर देखिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम श्रोताओं की टिप्पणियां सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और कहा जाता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मतलब मन में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है। क्या कहेंगे दीपा जी आप?
1: ये बात सही है कि जो मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना।
0: अब जी, हमारे जी, बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसके विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है और भी कुछ लिखा है, तो आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
1: ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ता है वो घटा सकता है, और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है।
0: और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं जिसके कारण बाद में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए।
0: और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है, मन में उत्पन्न हो रहे विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह है, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी, अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ न सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं, वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें, तो देखिए आप
1: थोड़ा सा हम अगर
0: सोच सकते हैं सही तरीके से
1: सही, और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता।

0: सकता, जीवन या कार्यस्थल। यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन की निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं। फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं, उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।
1: अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे और हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना

0: ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, के कहीं पे सैर के लिए निकल जाना या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहां पे कि आपको अच्छा लगे, मिलके लोगों के साथ व्यायाम करना या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें। अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं, हम एक थोड़ी सी अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरा सा हलचल हुआ या कुछ उठा पटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित है, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है और जैसे कि तीन पाव की सेर, मन की भूख

0: अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं और यही प्रतिकूलता को का सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पे जाइए जहां से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे तो घर में भी वही चीजों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना जरूरी है, कुछ व्यायाम करना जरूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना जरूरी है और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय लेने का किस्सा मैं बताना चाहूंगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के जो टीचर थे वो भी राजी थे, सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा इंतजार करो, इंतजार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता है।
1: और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है, वो ये कहती है कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेकर बहस होने वाली थी। उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था। हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
0: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है। अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रहे, लोग इंतजार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से। लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयां भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियां भी लेकर आती हैं।
1: जैसे कि
0: बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है खासतौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था
1: जी,
0: और कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर की आवाज करते हैं चर जो, और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाजा खूब जोर से आवाज करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है। तो इसलिए इनकी देखरेख करना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है और किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए,
1: ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसे कारण है जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सूख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी की वजह से दरार और ज्वाइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है, लकड़ी की चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहां पे आप देखेंगे कि नुकसान ज्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर है उस कमरे के।
0: और हमारी एक सखी है जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें, सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है उस जेल के पैकेट का उपयोग करें या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर

0: रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है, काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला करती है और पूरे घर में वो
1: पोंछ
0: पोंछ देती है, सारे अलमारी जितने टेबल हैं, कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी उसमें।
1: बिल्कुल सही कहा। और इन सब चीजों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें, खासतौर पर बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है। तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए। और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है। और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहां लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियां और उपाय दिए गए हैं, और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियां इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अब हम क्या कर सकते हैं?
0: गाना सुनवा सकते हैं।
1: चलो,
0: ये रहा गाना।

0: जान जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे,
1: बिल्कुल,
0: कि किस तरह से हिफाजत करें, लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में,
1: और तो जब बहुत शौकीन होते हैं कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के, और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में, और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है, तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही है। और जो फंगस दिखाई देता है खास तौर से सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती, धूप कहाँ से लाएंगे आप?
1: बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती है, मदद करती है जो दीदी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए, क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी, खास तौर पर मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो।
0: और फर्नीचर के लिए सही कवर भी जरूरी होता है, कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए, और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखाकर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें, तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी, तो हवा लगे। जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाती है।
1: और बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है तो हम डीह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में कपूर की टिकिया आप अलमारी में रख लीजिए, या नीम की सूखी पत्तियां भी, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खासतौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिये ना, फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी है जितने भी हमारे पास ये जरूरी सामान और कीमती चीजें, इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
0: और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियां होती हैं, टेबल होती है, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं
1: हम? खाना खाते हैं।
0: तो आज किस खाने की बातें करने वाले?
1: आज हम चलेंगे पंजाब की तरफ, जहाँ पे की भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के, बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
0: नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे, क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है, जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए की बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है
1: जी, ये अलग तरह की रेसिपी है। लेकिन हमने अपने श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है। उबले हुए, मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च, या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसे ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताजी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले, अदरक, लहसुन, ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए, ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दूकस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी, या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं।

0: प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा, जो पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है।
1: और मटर का पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है
0: जी।
1: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर लें, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून लें ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन अदरक प्याज हरा धनिया हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बनाकर उसमें भर ले, वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है। तो तवे पर सेक ले। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही होता है
0: जी।
1: पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारी जो सखियां और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि बनाएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश के व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने की, सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: मासूम फिल्म का गाना था, आरती मुखर्जी की आवाज, गुलजार के बोल थे, राहुल देवर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं दीपा जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बतियाए या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: अहदनामा।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वो डॉक्टर हैं डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं, संगीत से भी प्यार करते हैं, तो एक सवाल हमारा ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है?
2: पुरानी यादें ताजा हो रही है
1: जी।
2: उस जमाने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज, यही आप लोगों की आवाज और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं सकते हैं और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
2: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
1: जी।
2: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
1: जी।
2: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
1: जी।
2: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
1: जी।
2: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है
1: जी। तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहां तक मिथ है, कहां तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है?
2: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इन्फॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुई कि

0: रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
1: जी,
0: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है, लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
1: जी, जी।
0: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन होना महत्व का है
1: हाँ।
0: लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है
1: बिल्कुल।
0: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
1: जी।
0: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा ये गलत बात है और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है
1: बिल्कुल। तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं?
0: राइट, पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है
1: जी।
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं
1: जी।
0: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
1: जी। जी
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है
1: जी,
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी जरूरी है
1: जी। जी
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं
1: जी,
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं, उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं
1: जी। जी
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं
1: जी।
0: जैसे डायबिटीज, जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है
1: जी। जी जी
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं
1: जी।
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि प्रोस्टेट के कारण है या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है
1: जी। जी तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी या क्या तरीका है?
0: राइट, सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को
1: जी। जी
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आते हैं कि सिवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है
1: जी।
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है, सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है, यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है
1: जी।
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको

0: पर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है
1: जी।
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार पीएसए का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है
1: जी।
0: पीएसए बढ़ने के भी अलग अलग कारण है, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर पीएसए का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं
1: जी।
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं या अंदर यूरिन रह जाती है। सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है।
1: ओके।
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं
1: जी, जी।
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट है, कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है
1: जी। बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी, और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती है कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं। बेहतर है कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहां पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: जरूर, इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है।
1: क्या बात है।
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ। क्या बात है, सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऊपर वाले का वरदहस्त जरूरी होता है, सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है, मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है
0: जी, जी।
1: लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है, तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: राइट, सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना
0: जी,
1: या तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाएं आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है, प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाई रिडक्टेस इनहिबिटर, ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
0: जी।
1: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
0: जी।
1: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनेमिक्स कहते हैं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
0: जी जी।
1: सो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए।
0: जी।
1: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था।
0: जी।
1: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बड़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रिज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है, ये सब नए तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सके और पेशेंट को राहत दे सके ये कोशिश रहती है। लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं
0: जी, जी।
1: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं
0: जी, जी।
1: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है।
0: जी।
1: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी इसका प्रचार हो रहा है
0: जी, जी।
1: और पेशेंट वो

0: सोच के आ जाते कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट।
1: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाए वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि हमें दो तीन दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
0: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट्स क्वाइट ऑल राइट। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TURP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए तीन दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली तीन या चार दिन रखनी पड़ती है। कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है। लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था वो अब नहीं रहा है, पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही दो दिन के लिए एक दिन के लिए एडमिट होना पड़े। तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें।
1: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की आवाज।
0: किशोर कुमार की आवाज, क्या गाना है
1: जी। सुनते हैं यही गाना फिल्म सफर।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहां तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये

0: क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है, सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है वो किसी को पता नहीं है।
1: जी जी।
0: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है
1: जी।
0: क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपकी शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं, सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती है और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है
1: जी।
0: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है
1: जी। लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो इससे भी नुकसान
0: जरूर
1: है। तो
0: जरूर
1: डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
0: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है
1: जी।
0: स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर, कुछ चीजें जेनेटिक्स है, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं
1: जी। जी, यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
0: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना
1: जी।
0: ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए
1: जी, जी।
0: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है। लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है। जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
1: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा।
0: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है
1: जी।
0: सो हर पुरुष को मैंने बताया ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है, लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है
1: जी। और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं?
0: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहां इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जिसे हम कहते हैं, कभी कभी वहां पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है
1: जी। जी,
0: सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात है बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है
1: जी। तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
0: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है
1: जी।
0: अब एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत थी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है, और जब यूरिनरी समस्या बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है
1: जी।
0: अब बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है, तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी

0: वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या शुरू हो जाती है। सो यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूनिट जाने की इच्छा होने लगती है। सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है,
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए right. हैं। तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए, कौन सा गाना?
0: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो,
1: ब्लैक पेंथर काफी का गाना।
0: जी हाँ जी, रोमांटिक गाना है
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है
1: जी जी। डॉक्टर साहब, आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक जमाना था गाते थे
1: जी।
0: और यस, म्यूजिक इज सच ए सूथिंग थिंग कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है
1: जी जी।
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है
1: जी।
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं, सो म्यूजिक इज वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस
1: जी जी।
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है
1: जी। तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में सोचेंगे नहीं,
1: बंद हो जाएगा जी बिल्कुल। तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है रात में खासतौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तो ये क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ सावधानी रखें कि स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट, सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना जरूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और ज्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं
0: जी।
1: दूसरी बात लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे, रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है। सो काफी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफी दिक्कतें आने लगती है। सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है वैसा नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफी बाकी भी ऐसे कॉजेस है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं, सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
0: जी, जी।
1: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ये नहीं होता है, और ये भी

0: करना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते कहते कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है
1: जी जी।
0: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं, इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
1: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
0: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं
1: जी।
0: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है, और जब ज्यादा यूरिन जमा होने लगता है धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है
1: जी।
0: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल
1: जी।
0: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए
1: जी।
0: सो और फोर्थ इन्फेक्शन विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफी अलग अलग कारण हैं लेकिन ये कॉमन कारण है
1: जी।
0: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, कि काफी लोग मानते कि बहुत पानी पीना चाहिए, सच बात है पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है
1: जी।
0: तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है
1: जी।
0: और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा एक्सरसाइजेस ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सके। सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में, और दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है
1: जी। तो डॉक्टर साहब, आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए, क्या वजह हो सकती है? महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है
1: जी।
0: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है
1: जी।
0: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: तरह यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी आल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है
1: जी।
0: सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफस्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है
1: जी।
0: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है, और थर्ड फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं
1: जी।
0: वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कई ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है, क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है
1: जी।
0: कुछ

0: कंडीशन जिसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है, तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है। अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट और काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहां किसी को हम इसके बारे में बताएं, ये गलत बात है। आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को बता दें विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट है और बड़े ही जानकार डॉक्टर है। डॉक्टर साहब, यहां पर एक गाना सुनते हैं हम।
0: जरूर,
1: कौन सा गाना सुनवाया?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना, जो दंगल मूवी में है, बहुत अच्छा गाना है। और हाँ, इमोशंस भी बहुत अच्छे, फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है, वो गाना अच्छा रहेगा।
1: जी, सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। झूठ

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं। क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं।
0: ओके।
1: और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है। सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयां ऐसे यूज करनी पड़ती कि जिसके आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी, और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है? तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अवॉइड करना जरूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी जरूरी है
0: जी।
1: क्योंकि कभी कभी कहां से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है
0: जी।
1: सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं
0: जी। इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी है कई बार आजकल, जब न्यू कपल खासतौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
1: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये सही नहीं है
0: जी।
1: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है
0: जी।
1: हर पेशेंट whether is a man or a woman, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है
0: जी।
1: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है
0: जी।
1: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है
0: जी। बिल्कुल,
1: अल्टीमेटली सेक्शुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इम्पोर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्शुअल लाइफ इज इम्पोर्टेंट। सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से, इट इफेक्ट्स द सेक्शुअल एक्टिविटी ऑल्सो।
0: बिल्कुल,
1: ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनीबडी हेल्थी सेक्शुअल लाइफ इज इम्पोर्टेंट। सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं
0: जी। बिल्कुल, हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थितियां बहुत सारी आती हैं, तो आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं,
1: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: कुछ चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन इससे शर्म के मारे में कि ये बात हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: जरूर, लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं, कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है।
0: ओके।
1: ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके

0: कारण जैसे मैंने पहले बताया बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा इसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं
1: okay.
0: कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायुओं पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए। इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक न हो जाए। सो ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफकोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है
1: जी। दोस्तों सेहत नामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। आज की सभा में शेष मुख्य कार्यक्रम, उनका समय।

अब से कुछ ही पलों में हमारे युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम चौपाल आप सुनेंगे 7 बजे।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से आप सुन पाएंगे 6:30 पर, जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम 7:30 पर, समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर।

विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से 5:30 पर रात्रि 9:00। हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 आप सुन सकते हैं।

रामचरित मानस गान 6:30 पर, खेती में बात 6:45 पर, लोक भजन 6:50 पर।

वाका इनका समय रहेगा 7:20 पर। समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से 8:00, हिंदी में प्रादेशिक समाचार 9:00। सुगम संगीत 9:10 पर, ठीक 11:00 भी आप सुगम संगीत सुन सकते हैं। कार्यक्रम कुछ दिल से आप सुनेंगे 8:15 पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन पाएंगे 9:30 पर। फिल्म संगीत 11:30 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण हमने यहां संपन्न किया।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:05 हो चुके, हमारे युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी।

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में। आज के सफर में मैं हूं आपके साथ जया चतुर्वेदी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेरा युवा भारत पर। यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करने, उनकी व्यक्तिगत विकास के लिए एक डिजिटल और भौतिक प्लेटफॉर्म उन्हें प्रदान करने के लिए और इसी के साथ में उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई है। यह मंत्रालय ऑफ यूथ अफेयर्स ऑफ सपोर्ट के अधीन कार्यरत है और 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में यह लॉन्च किया गया था। यह योजना युवाओं 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग को अवसरों का समान पहुंच प्रदान करने और उनके आकांक्षाओं को साकार करने और विकसित भारत विजन में योगदान देने के उद्देश्य से बनाई गई है। माय भारत सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, यह एक मोमेंटम है जो युवाओं को वॉलेंटियरिंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप और सोशल इंगेजमेंट के माध्यम से एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। क्योंकि भारत में 65 आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, यानी कि जो हमारी ज्यादातर आबादी है वो बिल्कुल युवा है। राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार 15 से 29 वर्ष की युवा देश की प्रगति के बहुत बड़े या फिर हम यूं कहें कि प्रमुख स्तंभ है। देश युवाओं से ही प्रगतिवान है। आइए हम इसके उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। युवाओं को सामाजिक गतिशीलता, शैक्षिक समानता और व्यावहारिक कौशल प्रदान करना, वॉलेंटियर एक्सपीरियंशियल लर्निंग और मेगा इवेंट्स के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी, यूजीसी मान्यता प्राप्त लर्निंग अवसर प्रदान करना, इसी के साथ में नेतृत्व क्षमता, समाधान और उनके अंदर क्रिएटिविटी विकसित करना, उनके अंदर सोच विकसित करना और इसी के साथ में हर कार्य को स्वयं के नजरिए से किस तरीके से क्रिएटिव तरीके से पूरा किया जा सकता है, यह सोच क्षमता विकसित करना। माय भारत पोर्टल एक मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल युवा आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं NSS

छात्रों के लिए कॉलेज प्रोग्राम ऑफिसर वेरिफिकेशन करते हैं और इसी के साथ में इसमें विभिन्न क्षेत्रों में लर्निंग के माध्यम है। यह 45 दिन यानी कि 360 घंटों का एक प्रोग्राम है। इसमें इंडस्ट्री, सरकारी और नॉन प्रॉफिट पोर्टल्स शामिल हैं। आगे हम बातें जारी रखेंगे, आइए उससे पहले सुनते हैं गीत।

इसमें विभिन्न क्षेत्रों में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है। यह 45 दिन यानी कि 360 घंटे का प्रोग्राम है। इसमें इंडस्ट्री, सरकारी और नॉन प्रॉफिटेबल पोर्टल्स शामिल होते हैं। नॉन स्टूडेंट्स के लिए यह मैट्रिकुलस और आधार KYC जरूरी है। इसमें कई अलग अलग क्षेत्र होते हैं जो हमारे पसंद की क्षेत्र में हम ले सकते हैं। इसके तहत सामाजिक कार्य, आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण सभी क्षेत्र इसमें होते हैं। इसी के साथ में क्विज, निबंध, पेंटिंग, फोक म्यूजियम, ये सभी पर्सनलाइज लर्निंग, गेमिफिकेशन, मेंटरशिप, इसी के साथ में AI चैटबॉट, ये सभी क्षेत्रों में हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं।

आइए हम जानते हैं इसे रजिस्टर्ड कैसे करें। माय भारत ऐप पर जाएं, फिर यूथ रजिस्टर पर क्लिक करें। इसके बाद इसमें डिटेल्स भरें, जैसे नाम, आयु, शिक्षा, मोबाइल, ईमेल, आधार, डॉक्यूमेंट अपलोड, और उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपकी प्रोफाइल बनकर तैयार है। अब आप इसमें अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं और नया सीख सकते हैं। दोस्तों, राजस्थान में कई तरह की रोजगार अभी सूचनाएं मैं आपको देना चाहती हूँ। सीईटी 12th लेवल के फॉर्म अभी चल रहे हैं, जिसमें आप के लिए लास्ट डेट 23 जुलाई यानी कि 23 जुलाई है, और सीईटी ग्रेजुएशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें भी लास्ट डेट 2 अगस्त है। आइए आपको ले चलते गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते प्यारा सा गीत।

जी बिल्कुल, आदमी मुसाफिर है और यादें हमेशा जीवित रहती हैं। अब हम बात करेंगे हमारी जीवन शैली पर, जो हमारी सेहत तय करती है। हमारी सेहत ही हमारी जीवन शैली का आईना है। हम रोज वही करते हैं जो हम बनते हैं। छोटी छोटी आदतें ही हम बड़े स्वास्थ्य निर्माण करती है। दवाई से पहले दैनिक दिनचर्या, इसे सुधारना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि हम किसी की यादों में नहीं किसी के साथ जी पाए। क्योंकि दोस्तों, दवा तो सिर्फ इलाज करती है, लेकिन जीवन शैली बीमारी को जड़ से मिटा देती है। क्योंकि ईश्वर ने हम सभी को शरीर रूपी हीरा दिया है। स्वस्थ शरीर ही ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है हमारे लिए, और हमें इसे हर दिन स्वस्थ रखने के लिए काफी सारे प्रयास करने चाहिए। जैसे रोज सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कर ली, सवेरे खाने से पहले खीरा ककड़ी, प्याज टमाटर सलाद खा लिया, इसी के साथ में बहुत अधिक भोजन नहीं करना, या फिर पेय पदार्थ जैसे नींबू की शिकंजी, या फिर ऐसा भोजन करें जो

आसानी से बच जाएं। लेकिन इसे बनाए रखना हमारा सर्वप्रथम जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन हमने किया और हमारा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। ये हमें रोजाना रोजाना करना है। हमारी आज की आदतें ही हमारे 10 साल बाद के शरीर कैसा होगा उसका एक आईना होती है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन के लिए समान समय मिलता है और हम में से जो ये कहते हैं ना कि समय नहीं है, वो असल में आलस्य के शिकार होते हैं और सेहत के लिए समय ही नहीं निकालते। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल

लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल में ही समय बीतता है। सेहत कोई संयोग नहीं है बल्कि एक चुनाव है, हमारे जीवन का, हमारे भविष्य का और हमारे अपनों के साथ का। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। आइए हम सुनते हैं प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम तराने नए पुराने कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है दिल है के मानता नहीं।

लीजिए सुनिए अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारी।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: जावेद अख्तर का लिखा गीत सुनिए सोनू निगम की आवाज में। संगीत है शंकर एहसान लॉय का। फिल्म का नाम है कल हो न हो।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवें।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम है लावारिस।

गुलशन बावरा का लिखा गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म का नाम है जंजीर।

चार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी

0: सी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्रियों को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। यह स्वचालित और रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर 275 रूपये टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अगला गीत सुनिए कुमार सानू की आवाज में। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत के बोल लिखे हैं महबूब ने, संगीत है ए आर रहमान का और फिल्म का नाम है बॉम्बे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आइए सुनते हैं अगला गीत, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है अपनापन।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम में 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं, आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, साथ में जिले की चिट्ठी जयपुर अजमेर केंद्र से।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वर्ष 2030 तक राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पंचायतवार प्रभावी निगरानी पर जोर दिया। आरजीएचएस में नई व्यवस्था आज से लागू, मरीज 2000 रुपए तक की जांच सीधे करवा सकेंगे। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने सहित अन्य विषयों पर जयपुर में बैठक हुई। और राज्य में मॉनसून का पहला दौर थमने के बाद गर्मी और उमस का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने टीबी मुक्त राजस्थान के लिए पंचायतवार प्रभावी निगरानी किए जाने का निर्देश दिए हैं। श्री बागड़े आज लोकभवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गांवों को टीबी मुक्त करने के लिए ग्राम सेवकों की जवाबदेही पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि टीबी को आंकड़ों में नहीं बल्कि व्यवहार में हरेक मरीज पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे टीबी को पूरी तरह खत्म किया जा सके। राज्यपाल ने टीबी रोगियों को निक्षय मित्र किट भी वितरित किए। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने कहा कि राज्य को 2030 तक पूरी तरह टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभियान का 90% लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। अधिक जोखिम वाले 11,000 से ज्यादा गांवों का सर्वे किया गया है। इनमें से 9,000 से ज्यादा गांवों में विशेष शिविर लगाकर टीबी मुक्त राजस्थान के लिए कार्यवाही की गई है।

0: श्री खींसर ने बताया कि राजस्थान में देश में सबसे अधिक एक्सरे स्क्रीनिंग की गई है। राज्य के एनएचएम निदेशक जोगाराम ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों में टीबी मुक्त वार्ड अभियान चालू किया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में जांच के लिए नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है। इसके तहत ₹2000 तक की जांच के लिए पहले से मंजूरी नहीं लेनी होगी। वहीं तत्काल जांच के मामलों में टीपीए को 1 घंटे के अंदर और सामान्य मामलों में 3 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी। तय समय सीमा में कोई निर्णय नहीं होने पर आवेदन को ऑटो अप्रूव्ड यानी स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। वहीं आपातकालीन मामलों में पहले की तरह किसी भी तरह की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी। गौरतलब है कि टीपीए का मुख्य काम मरीजों के कैशलेस इलाज और बीमा दावों की प्रक्रिया को संभालना है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए ही अस्पताल के साथ मिलकर इसका अनुमोदन करता है। सरकार ने आरजीएचएस से सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों और डायग्नोस्टिक सेंटरों को इसकी कड़ाई से पालना करने के निर्देश दिए हैं। देशभर में जुलाई माह को अंगदान जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में प्रदेश में भी आम लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राज्य अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन सोटो से जुड़े डॉक्टर धर्मेश शर्मा ने बताया कि विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अंगदान से जुड़ी भ्रांतियां दूर की जा रही हैं।
1: हम आमजन के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और उनके मन में कुछ भ्रम होते हैं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ब्रेन डेथ के बाद अगर एक अंगदान होता है तो करीब 9 लोगों को जीवन मिलता है और कई सारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5 लाख लोगों को अंगों की जरूरत है, उसके सामने केवल 20,000 अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं। अगर जागरूकता बढ़े और ब्रेन डेथ के बाद में अगर उनमें से 50% लोग भी अपना अंगदान की उनके परिजन सहमति दे दें तो हम हिंदुस्तान में लगभग सभी लोगों को जिन्हें अंगों की जरूरत है अंग लगा सकेंगे।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज सिरोही जिले के आबू रोड पहुंचे। उन्होंने मानपुर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान बुद्ध के शांति, करुणा और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। श्री अठावले ने सद्भाव और सामाजिक समरसता को आज के समय की जरूरत बताया। पत्रकारों से बातचीत में श्री अठावले ने कहा कि सरकार जनहित योजनाओं के जरिए हर वर्ग को राहत देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूत कर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
2: एमएसएमई के माध्यम से छोटे मोटे उद्योग इधर अगर आते हैं तो बेरोजगार में रोजगार मिल सकता है। किसानों की जो फसल है उस फसल को भी मतलब कैसा अच्छा बदल मिले उसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से प्रयत्न होता है। किसानों के खाते में 6,000 रुपए डालने का भी निर्णय सरकार ने लिया है। किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और जो भी बैकवर्ड इलाके है उनको न्याय देने के लिए अगर हमारे पास योजनाएं आती है तो उनको पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ से होगा।
0: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली विशेष रेलगाड़ी आज राजधानी के जयपुर स्थित दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेलगाड़ी तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम और मदुरै लेकर जाएगी। इस मौके पर श्री कुमावत ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। बुजुर्गों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसके लिए यात्रा के दौरान अधिकारी, डॉक्टर्स तथा पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात रहेगा। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो देख सकते हैं। प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने सहित अन्य विषयों को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ऋण पुनर्गठन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की प्रगति पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने आधुनिक तकनीक के उपयोग

0: और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के समय पर क्रियान्वयन की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं से मिलने वाली अतिरिक्त बिजली के भंडारण के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण है। इससे पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम होगी और डिस्कॉम को हर साल बचत होगी। इसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। कोलंबिया में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। बुकारामंगा में हुई इस प्रतियोगिता में कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बेंडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर भारतीय टीम के सभी प्रतिभागियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने इसे देश की युवा शक्ति का विज्ञान के प्रति जुनून बताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी देश का गौरव बढ़ाने वाले इन प्रतिभाशाली युवाओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। राज्य में मॉनसून का पहला दौर थमने के साथ ही गर्मी और उमस का असर फिर से बढ़ गया है। अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। दिन के साथ ही रात में भी उमस बनी हुई है। फलौदी में कल पारा 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, श्रीगंगानगर और अलवर में भी दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। उधर हनुमानगढ़ में तेज गर्मी और उमस के बीच आज दोपहर बाद मौसम बदला और कुछ देर अंधड़ के साथ झमाझम बरसात हुई। सिरोही में बूंदाबांदी हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानी आबू राज की सुंदर वादियों का आनंद ले रहे हैं।
1: सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया। वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है। पहाड़ियों पर छाए बादल, धुंध से ढकी वादियां और ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। पर्यटक नक्की झील में नौकायान का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम में आए इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: मौसम विभाग ने 15 जुलाई के बाद मॉनसून का नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके बाद 2-3 दिन में कमजोर पड़े मॉनसून के फिर से रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। आज राजधानी जयपुर और भरतपुर संभाग के 9 जिलों में कहीं कहीं छुटपुट बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2-3 दिन में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्र में हल्की बरसात का पूर्वानुमान है। जोधपुर और बीकानेर में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कल जयपुर में राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि ये वेबिनार प्रदेश भर के सभी पीएम श्री विद्यालयों के प्रधानों के लिए होगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, नवाचारों और सह शैक्षणिक गतिविधियों पर मंथन किया जाएगा। जयपुर शहर में ट्रैफिक प्रबंधन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के साथ नई शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत जल्द ही सिग्नल का फिक्स टाइमर बंद होगा और सड़कों पर लाइव ट्रैफिक के हिसाब से सिग्नल अपने आप बदलेगा। न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिहा गाजी की रिपोर्ट।
2: 24 घंटे काम करने वाली AI आधारित ये व्यवस्था पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 39 दिनों तक इसका ट्रायल रामबाग सर्कल पर किया गया। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 4,88,000 से ज्यादा वाहनों ने सुगमता से चौराहा पार किया। ये AI सिस्टम सिर्फ ट्रैफिक ही मैनेज नहीं करता बल्कि अनुशासन भी बनाए रखता है। इस नई तकनीक से वाहनधारियों के समय के साथ ही ईंधन की भी बचत हो सकेगी। जल्द ही इसे पूरे शहर में विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
0: कोटा में आज एक सड़क हादसे में 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं 2 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हैंगिंग ब्रिज के पास एक बेकाबू कार के पलटने से हुई, जिसमें कार सवार युवक हादसे का शिकार हो गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों NRI तक अपनी पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। आज नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति को बनाए रखने के लिए NRI तक पहुंच बढ़ाने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को RBI

0: ई स्वैप सुविधा योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्ष 2030 तक राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पंचायतवार प्रभावी निगरानी पर जोर दिया। आरजीएचएस में नई व्यवस्था आज से लागू। मरीज 2000 रुपए तक की जांच सीधे करवा सकेंगे। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति मजबूत करने सहित अन्य विषयों पर जयपुर में बैठक हुई। और राज्य में मानसून का पहला दौर थमने के बाद गर्मी और उमस का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष गोयल। पिछले महीने कोटपूतली बहरोड जिले में कई सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियां संपन्न हुई। इसके अलावा जिले में मॉनसून ने दस्तक देकर लोगों को गर्मी से राहत दी। इन्हीं सब गतिविधियों के साथ सबसे पहले बात करेंगे दिशा बैठक की। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े विषय रखे। पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों से संबंधित लंबित प्रकरणों पर चर्चा हुई और अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 के प्रारूप पर सुझाव लेने के लिए जिला मुख्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुआ। समिति के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि सरकार इस विषय पर सभी वर्गों की राय लेना चाहती है। बैठक में जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें लोगों की राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल, बिजली, पंचायत, चिकित्सा और अन्य विभागों से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले दिनों बड़ी संख्या में लोगों ने शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराया। ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान ग्राम पंचायत पवाना अहीर की एक बुजुर्ग महिला की सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़ी समस्या का समाधान किया गया। तकनीकी कारणों से उनका वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा था। प्रशासन की टीम उनके घर पहुंची और ओटीपी आधारित प्रक्रिया से सत्यापन पूरा किया। इससे उनकी पेंशन फिर से नियमित होने का रास्ता साफ हुआ। इस पहल की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की। संभागीय आयुक्त और जिला प्रभारी सचिव वी शर्मा कुमार ने बानसूर उपखंड के भूपसेड़ा गांव में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से योजना का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि इससे खेती के साथ ऊर्जा उत्पादन का भी अवसर मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा के उपयोग से किसानों की आय बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। जिले में नशे के विरुद्ध अभियान को लेकर जिला स्तरीय नार्को समन्वय समिति की बैठक जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। इसमें पुलिस और संबंधित विभागों ने मादक पदार्थों की तस्करी, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध शराब के मामलों की समीक्षा की। अधिकारियों को संयुक्त कार्रवाई जारी रखने और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पिछले दिनों अवैध खनन की रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय खनिज विकास और पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक हुई। इसमें पुलिस विभाग, खनन विभाग, वन और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से लागू नया सफर योजना की समीक्षा को लेकर जिला मुख्यालय पर बैठक हुई। अधिकारियों ने बताया कि पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहन खरीदने पर कर, पंजीयन शुल्क और वाहन ऋण पर ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पिछले दिनों पावटा उपखंड के सुजात नगर में नट समाज उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने नट समाज की कला और सांस्कृतिक परंपराओं की सराहना की। श्री बागड़े ने कहा कि शिक्षा समाज के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया।

0: प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला पिछले दिनों आयोजित हुई। इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। कृषि विशेषज्ञों ने प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण, जैविक खाद, फसल विविधीकरण और कम लागत वाली खेती की तकनीकों की जानकारी दी। इस महीने जिले में मॉनसून ने दस्तक दी। कई स्थानों पर तेज तो कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। हालांकि फिलहाल मॉनसून कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियां थमी हुई है। इसके साथ ही कोटपुतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, साल 2030 ताई राजस्थान ने टीबी मुक्त बनावण रो लागस। राज्यपाल हरिभाव बागड़े पंचायतवार असरदार निगरानी माथे जोर दियो। आरजीएचएस माए नुआ बंदोबस्त आज लागू। मरीज 2000 रुपया ताई री जांच सीधी करा सकेला। प्रदेश ने ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भर बनावण और डिस्कोमरी माली हालात मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा माथे जयपुर माए मीटिंग भी। और राज्य में मानसून रो पहलो दौर थमण रे पछे गर्मी और उमस रो असर बढ़ियो। समाचार रे साथ है मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। राज्यपाल हरिभाव बागड़े टीबी मुक्त राजस्थान सारू पंचायतवार असरदार निगरानी किया जाऊं सारू निर्देश दिया है। श्री बागड़े आज लोकभवन में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन री प्रगति री समीक्षा कर रिया है। वना गांवा ने टीबी मुक्त करण सारू ग्राम सेवकारी जवाबदेही माथे जोर दियो। राज्यपाल कहो के टीबी रा आंकड़ा माए नहीं बल्कि व्यवहार माए हर एक मरीज माथे ध्यान देवन री जरूरत है जिन्हों टीबी रो पूरी तरह खात्म करियो जा सके। राज्यपाल टीबी रोगियों ने नीक से मित्र की टी बांटिया। ई मौके चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर कहो के राज्य ने साल 2030 ताई पूरी तरह टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बतायो कि राजस्थान में अभियान रो 90% लगस पूरो कर लीजियो है। बत्ती जोखिम वाला 11,000 गांव रो सर्वे करीजियो है। इनमायू 9,000 गांव में खास शिविर लगार टीबी मुक्त राजस्थान सारू कार्रवाई करीजी है। श्री खींवसर बतायो कि राजस्थान में देश में सब 32 एक्सरे स्क्रीनिंग करीजी है। राज्य रा एनएचएम निदेशक जोगाराम बतायो के शहरी स्थानीय निकाय में टीबी मुक्त वार्ड अभियान चालू करो जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में जांच सारू नुआ बंदोबस्त आज लागू हो गया है। इनके तहत 2000 रुपया ताई जांच सारू पहलाऊ मंजूरी नहीं लेवनी वेला वठे तुरंत जांचरा मामला में टीपीए ने 1 घंटा में और दूजा मामला में 3 घंटा में मंजूरी देवनी वेला। तय भगत माए कोई फैसलो नहीं होन माथे अर्जीदार ने ऑटो अप्रूव्ड मतलब खुद मंजूरी मानी जाएला। वठे इमरजेंसी मामला माए पहला री तरह किणित रहरी पहलाऊ मंजूरी री जरूरत नहीं वेला। ध्यान जो गए के टीपीए रो खास का मरीजा ने कैशलेस इलाज और बीमा दवारी प्रक्रिया ने संभालनो है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए अस्पताल रे साथे मिलने इनने मंजूरी करे है। सरकार आरजीएचएस में जुड़िया सगड़ा प्राइवेट अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर ने इनरी कड़ाई पालना करने का निर्देश दिया है। देश भर में जुलाई महीना ने अंगदान जागरूकता महीना रा रूप में मनायो जावे है। ई कड़ी में प्रदेश में लोगों ने अंगदान स्वरूप प्रेरित करा जावे। राज्य अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन सोटो जुड़िया डॉक्टर धर्मेश शर्मा बतायो के न्यारी न्यारी जागरूकता गतिविधियां री मार्फत अंगदान जुड़ी गलतफहमियां दूर करी जायला।
2: हम आमजन के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए और उनके मन में कुछ भ्रम होते हैं उनको दूर करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करते हैं। ब्रेन डेथ के बाद अगर एक अंगदान होता है तो करीब 9 लोगों को जीवन मिलता है और कई सारे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 5 लाख लोगों को अंगों की जरूरत है, उसके सामने केवल 20,000 अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं। अगर जागरूकता बढ़े और ब्रांडेड के बाद में अगर उनमें से 50% लोग भी अपना अंगदान की उनके परिजन सहमति दे दें तो हम हिंदुस्तान में लगभग सभी लोगों को जिन्हें अंगों की जरूरत है अंग लगा सकेंगे।
1: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज सिरोही जिला रा आबू रोड पुग्या। वना मानपुर माए भगवान बुद्ध री मूर्त रो अनावरण करियो। ई मौके वना भगवान बुद्ध रा शांति करुणा और मानवता रा संदेश ने जन जन ताई पुगाउन री अरज करी। श्री अठावले सद्भाव और सामाजिक समरसता ने आज रा भगत री जरूरत बताई।

0: ખબર નવીસા સાથે બતલમાં વણા કહ્યું કે સરકાર જનહિત યોજનાવારી મારફત હર તબકાને રાહત દેવાની કોશિશ કરી રહી હૈ. વણા કહ્યું કે એમએસએમઈ સેક્ટરને મજબૂત કરને રોજગારના મોકા વધાયા જા રહ્યા હૈ.
1: एमएसएमई के माध्यम से छोटे मोटे उद्योग इधर अगर आते हैं तो बेरोजगार में रोजगार मिल सकता है. किसानों की जो फसल है उस फसल को भी मतलब कैसा अच्छा भाव मिले उसके लिए भी हमारे सरकार की तरफ से प्रयत्न होता है. किसानों के खाते में 6,000 रूपये डालने का भी निर्णय सरकार ने लिया है. किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है. और जो भी बैकवर्ड इलाके है उनको न्याय देने के लिए अगर हमारे पास योजना आती है तो उनको पूरी मदद करने का प्रयत्न हमारी सरकार की तरफ से होगा.
0: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत पहली खास रेलगाड़ी आज जयपुर रा दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन रवाना हुई. देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत इन्हें हरी झंडी दिखा रवाना करिया. आ रेलगाड़ी तीर्थ यात्रियों ने रामेश्वरम और मदुरई ले जावेला. ए मौके श्री कुमावत कहो कि तीर्थ यात्रियों री सुविधावा सारू के इंतजाम करी जा है. बुजुर्गों ने किणी तरह की परेशानी नहीं हुए इस सारू यात्रा के दौरान अहलकार डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहेला. प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो. इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो. प्रदेश ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भरता कानी तेजियों कदम बढ़ा रही है. इस आरू डिस्कोमरी माली हालात में मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा ने लेर आज जयपुर माए समीक्षा मीटिंग भी. मुख्य सचिव वी श्रीनिवास री अगुवाई माए भी ये बैठक माए कर्ज पुनर्गठन बैटरी एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की प्रगति माथे चर्चा करी जी. मुख्य सचिव आधुनिक तकनीक ने काम में लेवण और अक्षय ऊर्जा परियोजना ने भगत सर लागू करने की जरूरत बताई. वना कहो कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और दूजी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में मिलने वाली बत्ती बिजली भंडारण सारू बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम महत्व है. इणु पीक आवर्स में महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम होवेला और डिस्कॉम में हर साल चौखी बचत वेला इनो फायदो उपभोक्ताओं ताई पुगेला. कोलंबिया में भी 56वीं अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय टीम सोना रो तमगो हासिल करियो है. बुकारा मंगा में भी ई होड में कनिष्क जैन, रिद्धेश अनंत बैडाले, ऋषित गर्ग, श्रेष सुरैया और स्वरित जोशी भेड़ारिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई कामयाबी माथे भारतीय टीम रा सगला प्रतिभागियों ने बधाई दी है. श्री मोदी इन देश री युवा शक्ति रो विज्ञान रे प्रति जुनून बताया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही देश रो मान बढ़ावन वाला आ हुनरमान नौजवाना ने बधाई देता वारा चोखा भविष्य री कामना करी है. मौसम राज्य में मानसून रो पहलो दौर थमण रे साथ ही गर्मी और उमस रो असर फिर बढ़ गयो है. घनकरी थोड़ा तापमान में बढ़वार भी है. दिन रे साथ ही रात में उमस बनी उड़ी है. फलोदी में काले पारो 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी जो. इनके अलावा बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, श्री गंगानगर और अलवर में दिन रो तापमान 38 डिग्री सेल्सियस ऊपर रियो. ऊटी में हनुमानगढ़ में तेज गर्मी और उमस रे बीच आज दोपहर पछे मौसम बदलो और कुछ देर अंधड़ रे साथ ही झमाझम बिरखा भी. सिरोई में छाटा छिड़को भी हो. मारा खबर नवीस बतायो कि आ दिना घनी तादाद में सैलानी आबूराजरी सुंदर वादियां रो लुत्फ उठा रिया है.
2: सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में आज हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम सुहाना हो गया. वहीं राजस्थान के एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में मौसम बेहद खुशनुमा बना हुआ है. पहाड़ियों पर छाए बादल, धुंध से ढकी वादियां और ठंडी हवाएं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं. पर्यटक नक्की झील में नौकायन का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा रहे हैं. मौसम में आए इस बदलाव से स्थानीय लोगों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है. साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही.
0: मौसम महकमो 15 जुलाई रे पछे मानसून रो नुआ सिस्टम सक्रिय होने की आस जताई है. इन रे पछे 2-3 दिन में कमजोर पड़ो मानसून फिर गति पकड़न रा आसार है. आज जयपुर और भरतपुर संभाग रा 9 जिला में कटे छुटपुट बिरखा बह सके है. वही आता 2-3 दिन में बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आरएसआर रा हल्का में हल्की बिरखारी आस है. जोधपुर और बीकानेर में धूल भरी आंधी चालन रा आसार है. जयपुर शहर में ट्रैफिक बंदोबस्त सारू आधुनिक तकनीक के साथ नवी शुरुआत होवन जा रही है. इनके तहत बेगाई

0: सीधन रो फिक्स टाइमर बंद वेला एरसगड़का माथे सीधा ट्रैफिक राज हिसाब सिग्नल अबे अपने आप बदलेला। न्यूज डेस्क हमारी सहयोगी डॉक्टर सालिया गाजीरी रिपोर्ट।
1: 24 घंटे काम करने वाली एआई आधारित ये व्यवस्था पूरी तरह ऑटोमेटिक है। 39 दिनों तक इसका ट्रायल रामबाग सर्कल पर किया गया। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 4,88,000 से ज्यादा वाहनों ने सुगमता से चौराहा पार किया। ये एआई सिस्टम सिर्फ ट्रैफिक ही मैनेज नहीं करता बल्कि अनुशासन भी बनाए रखता है। इस नई तकनीक से वाहनधारियों के समय के साथ ही ईंधन की भी बचत हो सकेगी। जल्द ही इसे पूरे शहर में विस्तार देने का निर्णय लिया गया है।
0: स्कूल शिक्षा महकमा कानियों काले जयपरमाए राज्य थरी वेबिनार रो आयोजन कर उजाला। स्कूल शिक्षा महकमा रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव बतायो के आ वेबिनार प्रदेश भर रा सगड़ा पीएम श्री स्कूल रा प्रधान आसारू वेला। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होवन वाला ई कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में असरदार लागूकरण नवाचार और सह शैक्षणिक गतिविधियां माथे मंथन कर उजाला। वस्त्र प्रदर्शनी भारत टैक्स 2026 काले नई दिल्ली में शुरू वेला। देशरी सब मोटी वैश्विक वस्त्र नुमाइश रो आयोजन भारत मंडप में कर उजाला। 4 दिन की नुमाइश में कपड़ा फैशन प्रौद्योगिकी नवाचार निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार रा हल्का में भारत री बदती अगुवाई रो प्रदर्शन कर उजाला। ओ निर्माता निर्यातक वैश्विक खरीदार निवेशक नीति निर्माता अंतर्राष्ट्रीय नुमाइंदा मंडल कारीगर स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं ने एक मंच माथे लावेला। कोटा में आज एक सड़क हादसा में 2 लोगों की मौका माथे मौत वेगी वठे 2 दूजा घायल वे गया। हादसों राष्ट्रीय राजमार्ग 27 माथे हैंगिंग ब्रिज कने एक बेकाबू कार ने पलट जावन नहीं हो। मैं अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ली रहो। साल 2030 ताई राजस्थान ने टीबी मुक्त बनावण रो लगस। राज्यपाल हरिभाव बागड़े पंचायतवार असरदार निगरानी माथे जोर दियो। आरजी एचएस माए नुआ बंदोबस्त आज लागू। मरीज 2000 रुपया ताई री जांच सीधी करा सकेला। प्रदेश ने ऊर्जा हल्का माए आत्मनिर्भर बनावण और डिस्कोमरी माली हालात मजबूत करण समेत दूजा मुद्दा माथे जयपुर माए मीटिंग भी। और राज्य माए मानसून रो पहलो दौर थमण के पछे गर्मी और उमस रो असर बध्यो। नरेंद्र साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करो जाएला। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। एफएम में 101.3 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजे ही आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल।

0: गोद है, तुअर है, ये भी करी जा थका है। मैं भाई ने तो पहले बुआई करी दी है लगभग 15-20 दाड़ ने फसल थवा आवी। तो अवे अपन खास करी में फसल ने आ खरपतवार नियंत्रण अपने टेम में करी देव है भाई, क्यों क्या टेम में नहीं करूंगा तो आ खरपतवार बढ़ी जाएगा। तो अपने मेहनत वधारे पड़े, पास मेहनत भी पड़ेगा इन खर्चो भी वधारे लगे। एट जी शुरू स्टार्ट में अपन धीरे धीरे नियंत्रण करता जाएगा तो आ नियंत्रण अपन समय थकी करी सका। किसान भाई मैं भाई मक्का है, सोयाबीन है, तो हाल थकी हड़ी नाखी मैं भाई कड़पो थकी भी आ खोड़ में नियंत्रण करे। तो इन कड़पा वगैरह देवा थकी या खोड़ है ही हुकाई जगह उन्हें थकी भाई आप फसल जी मुख्य फसल है अपनी ये अगाड़ी बढ़ी सकेगा। अच्छो ने हवा है, खाद बीज नु भी अपने पानी नु भी ध्यान रखू है। इन्हें हाथ हाथ किसान भाई आप कीट नु नियंत्रण खास ध्यान रखू है भाई, क्योंकि आ कीट भी अपने शुरू स्टार्ट थकीस इन नियंत्रण करवू है। क्योंकि आ गाड़ी अपने वधारे कीट नो प्रकोप थी जो ने अपन इन दवाई वगैरह साठवा देंगे तो अपने मेहनत वधारे पड़ी जाए। आनंद देखो आनंद नीम नो तेल है, इन अपने छिड़काव 5% नीम आर्क छिड़काव कर दें तो इन थकी भी आ पासो कीट नियंत्रण कर सके। एटले किसान भाई आनी वात नु अपन खूब ध्यान रखू भाई, केम के आ कीट एवी चीज है भाई आन थकी अपनी फसल है खराब थती जाए। एटले आन समय थकी अपने ध्यान रखू है। किसान भाई खेतर में भी अपने हाजिर रहू, हर रोज फसल पर अपने ध्यान देव है। केम के अपन भाई महीना 15 दाड़ा में एक वक्त खेतर में जाऊंगा तो खेत हूँ समस्या है, हूँ कीट है या अपने पानी समस्या है कि खाद नहीं समस्या है कि अपने जानकारी हर रोज अपने देखभाल फसल में करवी जरूरी है। किसान भाई बातें चाली रही पर आ किसान भाई की बात अपने है तो ये होने पसे आगाड़ी बातें करें अपन।
1: राम राम साहब, तमारो नाम परचु क्या करना साहब? मर्जी ना जी मर्जी ना हवे हवे परचु भाई आप तो अच्छा बड़ा बड़ा व्यक्ति हो तो खेती बाड़ी में काम पकड़ी दे खेती बाड़ी में पकड़ी साहब जो खेती करवी में जमीन है तुम्हारे जमीन है साहब सब बढ़िया बात है। खेती बाड़ी में लग जाए खेती बाड़ी में लग जाए साहब जो हवे साहब पानी पड़ी है 8-10 दाड़े पहले पानी पड़ी गयी वे लगवा अपना वरवा लो तो मकई तुअर ले वरवा लो तो पहले मैं सरकार से भी करी दी है।
2: अच्छा मकई वकार कर
1: मकई करी साहब मकई करी मैं पास थियर में मोटा मोटा फैली वही दे दे।
2: अच्छा अच्छा
1: मकई में थुअर हाथे करो मकई में थुअर हाथे साहब सारा करो मक्की में उदय से की हम सारा करी गए।
2: अच्छा
1: मैं ठीक में ही उड़ दे गए मोटा बम बम सीटी ठीक है हियाड़ा में काम लगी जाए मक्की है या डेढ़ 3 महीने में घर में काफी फसल आ गई जाए पाकि
2: सही बात है भैया। मक्की जल गुडाई बस भी बड़ा नहीं
1: अभी बड़े साहब काटो था।
2: अच्छा
1: तो पानी है पूर में पानी पड़े है या पवन आवे कहीं कर कहीं कर सीबा ले तबड़े अम्मी अम्मी टड़ा नहीं पवन कटवाड़ काटो रहे।
2: अच्छा अड़वा से फिर गणा गुण देते
1: गुण अड़वा से फिर हम जड़े खोड़ है भी हम तुम की जाए तो भी अपना अपना लड़ाई करने का आ जाए
2: खोड़ भी हमें तो नियंत्रण थी जाए
1: साफ थी जाए
2: खोड़ कम थी जाए
1: कम थी जाए ऊँसू थी जाए।

0: कांटा में फिर क्षेत्र में ना कहा वो तई को जी बीज है का बोल जा है तो लाटन खादी नु है ये सब गोबर में
1: खड़ी जा
0: खड़ी जा कच्चो गोबर ना पता कि रास्ता था कि तई क्षेत्र में नुकसान है
1: नुकसान उदय आवी जा
0: उदय आवी जा भी खोड़ बसाई पड़ी जा रहा था ये अपन ने माने खतर में अपना मस पापो करो पड़े
1: गड्ढा
0: खड्डा में और नाकी के पास पैरिया को जरा पानी पर आए नहीं तेरा पानी थे कि पाई मन में गुब्बर पापो थी जाए बीज है इन मटी जाए खड्डा में मटी जाए एट अपने खेतर में ना पास पोस तई कदी ता खोलू अपने मेहनत तो पड़े पर पापो करव पड़े
1: पाकू करव खरी बात है भाई आपू काम ही अपने किसान भाई जी
0: हाँ काम ही सही है
1: खेती में भाई मेहनत करनी
0: मेहनत करनी
1: मेहनत मानो
0: मेहनत मानो का ना हिसाब
1: सही बात है
0: पर तू भाई आप मिला ना मन तो बड़ी खुशी थी मन की साहब तो अमन भी खुशी
1: अमन नशा रही है क्या भरतू भाई तक आज हम थोड़ी चर्चा कर दी
0: हम तो अमन भी खुशी थी साहब अपने मिलाकर थी दो मिनट पांच मिनट और टाइम काटी नहीं
1: पासवार सुमा सा दाड़ा सालू का थका था पशु में पशु का सावधानी दुआड़ वगैरह में बसाबो पड़े बस
0: अबे बसाबो पड़े दाड़ा तो अजय ठीक है बट रात आप तो गोदड़ा है कोई साल है वो दिन आप तो आराम करा यार मैं पंखा साल है आपको तो
1: बिल्कुल
0: लाटने आप बाहर बांधी नहीं है तो इन्हें जानवर का छोटी छोटी ने पहले तो हम खुशी जी करी ना की लोई लवन करी ना किसी तो टाटा तो पहले लोसा खाई के तो पैसा ही दिल में कहा आवे
1: दिल में कहा
0: तो इन्हें भी सुरक्षा कही पड़े इन्हें बसाव करो बसाव करो पड़े तो आड़ू है डोबरा डाड़ी मिंग है माते अपना जी कोडोर है वो नाकी मिंग है काटी नाकी मिंग है पूछो तो आता ही करे पत्ती है चाहे कड़ुआ से की मतलब ना ही जी ना ही जी
1: सही बात है भाई
0: पेड़ है नहीं
1: अच्छा उपाय है भाई
0: हाँ
1: पशु के
0: जी
1: जी है बोली सके नहीं हम ले सके
0: नहीं हम ले सके
1: इन्हें बचाव करो
0: बसा पहले करो पड़ेगा
1: बिल्कुल पर तू भाई आप आपने लिया बहुत अच्छी बात करी अली आपने बहुत बहुत धन्यवाद साहब
0: धन्यवाद साहब
1: राम राम
0: राम राम राम
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: वाह भाई, किसान भाइयों, आप भाई परतु भाई की बात होनी, इन्हें हाथ विज्ञापन भी होने, मैं अपने बात साली रीति खेती बाड़ी नहीं। किसान भाइयों देखो, आप मौसम भाई जातो मौसम ना आवतो मौसम, मैं आप खास कर स्वास्थ्य ने देखभाल अपने जरूरी रखिए भाई, केम के आ चौमासा दाड़ा है। आना दाड़ा में अपने खास कर माकी मच्छर थकी बचवू जरूरी है, केम के आपड़ो मेन बीमारी भाई आ मक्की मच्छर थकी बीमारी पैदा थी। एटले आना समय में अपने घर ने आसपास कहीं पानी एकट्ठू है तो बिल्कुल एकट्ठू नहीं थवा देव, केम के आ पानी थकी मच्छर पनपे। कहीं आपड़ो भाई गमला है कोई

अभी आपने नानू भाई से कार्यक्रम चौपाल सुना। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। निजी सुनिए जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम।

0: बहुत देर से बुआई करण सु अपनी फसल नुकसान भी वे सके है। हर देखो किसान भाया फसल उगण लगे जना निराई गुड़ाई जरूर करो। खेत में खरपतवार फसल रो भोजन पानी और खाद खा जाया करे, क्योंकि आपा देखा नीता बहन जगी घास वगैरह जगी हुए खरपतवार आ काई करया करे कि आपने जगी पौधा की जगी हुए भोजन भी ने खा जावे। हर अगर समय समय पर खरपतवार अगर नहीं हटाई गई तो फिर पैदावार 20-30% तक घट भी सके है।
1: बिल्कुल सा, देखो पैदावार पर तो असर पूरे पूरे उनको पड़े ही चाहे, और हर चीज को आपने समय पर ध्यान रखनी चाहिए कि टाइम आपने खाद और उर्वरक को देनी चाहिए, कि टाइम सिंचाई करनी चाहिए, निराई गुड़ाई को भी आपने पूरा ध्यान रखना चाहिए, और जब रोग लग जावे तो उनको कीट नियंत्रण करबा को भी आपने समय समय पर निगरानी करती रहनी चाहिए, और अगर कीट नियंत्रण लग जावे तो उचित दवाई को प्रयोग भी आपने किसान भाई ने फसल में करनी चाहिए।
0: और देखो चौकी खाद और उर्वरक आप अगर देवाला तो बिसू आपने उपजाऊ भी ज्यादा वैसी।
1: बिल्कुल सा, देखो खाद को तो अपनी फसल में पूरो पूरो असर जावे चाहे भाई, रासायनिक उर्वरकों को कम से कम प्रयोग करा और जैविक खेती की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देवा। शुरुआत में तो देखो रासायनिक उर्वरक अगर आप बंद करा चाहे तो फसल पर थोड़ा बहुत फर्क पड़े छे, क्योंकि जमीन एकदम से जमीन और फसल दोनों से उन्हें कर कौन पावे, पर धीरे धीरे जी आप जैविक खेती की तरफ बढ़ा चाह तो अपनी पैदावार और अपनो मुनाफो दोनों ही बढ़ता जावे छे।
0: और देखो बरसात में कणा कणा आपने घणो पानी अगर आपने खेत में भर जावे और पानी अगर लगातार पड़े रहे खेत में तो देखो अपनी फसल खराब भी हो सके। इस कारण आपने खेत में जरूरत अनुसार पानी री निकासी री ध्यान रखनी भी बहुत जरूरी है।
1: उनके साथ ही निराई गुड़ाई खरपतवार हटावो भी और मिट्टी में भुरभुरी करवो भी टेम टेम पर जरूरी है। किसान भाई देखो खरीफ की प्रमुख फसलों में धान, मक्का, बाजरू, जवार, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और अरहर आवे छे, तो यहाँ सभी फसलों में जो भी टाइम वाले जो काम हो रहा है तो वो काम अपना किसान भाई करता रहे, जिससे कि फसल को जो बेहतर चाहे वह भी बनी रहे और अपने किसान भाई की मेहनत भी बेकार न जावे।
0: और देखो टाइम पर करी गई शस्य क्रिया आपने किसान जगी धान की कोट रहे हैं बे पूरी भर देसी।
1: तो अब एक भजन सुन लेवा।

डॉक्टर अतर सिंह मीणा, पूर्व अतिरिक्त निदेशक उद्यान विभाग राजस्थान जयपुर। किसान भाइयों, आज मैं प्रशिक्षण की कृषि में क्या महत्व है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। आप भली भांति जानते हैं और वैसे तो एक ऋग्वेद में कहावत है, सुन सिर्वम वाचम रुचिताम यद्यपि चक्षु तेने भागितम सिंचितम। खेती करने से पूर्व हमें उसका ज्ञान व प्रशिक्षण करना आवश्यक है। प्रशिक्षण क्या है इसके बारे में आप ऐसे तो जानते ही हैं कि किसी की विचारधारा, एक तरह से किसी कार्य के लिए हमें उसको तैयार करना है, उसकी जो विचारधारा है, उसकी कार्य है, कार्य क्षमता है, ज्ञान है, कौशल है, और नए कार्य के प्रति वर्तमान और भविष्य के लिए तैयार करना एक तरह से प्रशिक्षण है। खेती में बहुत सारे कार्य होते हैं, उसकी जुताई से लेकर कटाई तक, तो उसमें जैसे किस प्रकार से उसको जुताई करनी है, कैसे बीज की बुवाई करनी है, बुवाई के बहुत सारे तरीके हैं, कतारों में जैसे बुवाई करनी है उसकी भी हम जानकारी देते हैं कि कितनी दूरी पर बोना है, कतार से कतार की दूरी कितनी रखनी है, बुवाई से पहले हमें मिट्टी परीक्षण करना है, इन सब की जानकारी प्रशिक्षणों के माध्यम से देते हैं। खेती में एक और कहावत है कि अधिक उपज का राज है खाद पानी और बीज, इसमें चूक ना कीजिए ये अनुभव की सीख। तो खेती में अधिक उत्पादन लेना है उसके लिए बीज तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ खाद व उर्वरक का प्रयोग करना किस प्रकार से करें, ये जो जैविक खाद होता है इसको हम बुवाई से पूर्व 10-15 दिन पूर्व ही मिट्टी में मिला देते हैं, और जो और अन्य पोषक तत्व हैं वो मिट्टी परीक्षण के आधार पर करने की जानकारी दी जाती है हर एक प्रशिक्षणों में। फिर भी हम ये कहते हैं कि किसान भाई जैसे नत्रजन है, उर्वरक है उसकी आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बोते समय बुवाई से पूर्व जमीन में मिला दें, और नत्रजन की जो शेष मात्रा है वो यदि रेतीली जमीन है, दोमट है, तो उसमें हम दो बार में खड़ी फसल में प्रयोग करने की सिफारिश करते हैं। थोड़ी जमीन भारी है या दोमट है उसमें प्रथम सिंचाई के समय या निराई उड़ाई के बाद उसमें उर्वरक प्रयोग करने की प्रशिक्षण जानकारी देते हैं। पानी के कैसे प्रयोग करना है, क्योंकि पानी बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहावत है कि कम पानी में दे सके हमें उपज भरपूर, ऐसी फसल प्रजाति का चयनित करो जरूर, जड़े जिसकी हो फैली और रोग कीट से होने फसल की चादर मिली। तो ऐसी फसलों को चयन करना चाहिए जिनमें कम पानी की जरूरत हो, सूखा जो सहन कर सकते हैं, और पानी को हमें क्रांतिक अवस्थाओं पर ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो अवस्था है जिस पर यदि हम पानी का प्रयोग करते हैं तो उससे अधिक से अधिक फायदा मिलता है, और उस अवस्था पर यदि पानी का प्रयोग नहीं करते हैं तो फसल में उत्पादन घटता है, उस पर पौधे पर कुप्रभाव पड़ता है। तो विशेष रूप से जैसे बहुत सारी दलहनी फसलें होती है, ज्यादा जैसे शाखा पड़ने या फूल फली आने पर सिंचाई करते हैं, बहुत सारी इस तरह की है सब्जियों वाली कि हर एक जैसे गर्मियों में हम रेतीली जमीन में तो हर सप्ताह में पानी देने की सलाह देते हैं, बाकी 10-15 दिन के अंदर पानी देते हैं, और बरसात में यदि वर्षा होती है तो देते नहीं है, लेकिन फिर भी सर्दियों में हर एक फसल में 10-15 भी है। विशेष रूप से जैसे गेहूं जैसी फसल है तो 20 से 25 दिन पर एक अवस्था होती है सीड्स जड़ जब देगी, इस समय पानी अवश्य देना चाहिए, और उसके बाद में उसकी जो खिलने निकलने की अवस्था होती है 40-45 दिन पर, उस समय दूसरा पानी देना चाहिए। फिर उसमें गांठे बनने की अवस्था होती है 65 दिन में, उस समय देना चाहिए। बाली निकलने की है 85 से 90 दिन पर, उस समय करो, या उसके बाद में आपके जैसे दूधिया अवस्था है 100 से 110, या उसके डब कठोर होने की अवस्था है, दाना पकने की अवस्था है, वो 115 से 120 दिन की अवस्था पर हमें पानी देना चाहिए। लेकिन यदि बहुत ही पानी कमी है, माने एक ही पानी है या दो पानी है, तो दो पानी में हमें एक तो उसकी दूधी अवस्था और एक जो सीड जड़ जमने की अवस्था महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार से यदि एक ही पानी देना है तो सीड जड़ जमने की अवस्था पर देना चाहिए। कीट व्याधि का कौन कौन से कीट व्याधि लगती है फसलों में, उन पर क्या लक्षण है, किस प्रकार नुकसान करते हैं, उनके क्या उपाय है, उसकी भी जानकारी हमारे प्रशिक्षणों में देते हैं। तो ये प्रशिक्षण का कृषि में काफी महत्व है। प्रशिक्षण कई प्रकार का होता है, जैसे प्रशिक्षण हम एक तो किसानों को देते, दूसरा हमारे जो विस्तार कार्मिक है जो किसानों को जानकारी देते हैं उनका भी प्रशिक्षण

होता है उनका प्रशिक्षण दो प्रकार का है। एक तो सेवा में जैसे ही कोई प्रवेश करता है तो उस समय उसको प्रशिक्षण देते हैं, एक सेवा के दौरान, इसको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी बोलते हैं, तो उसको पूरे किस प्रकार से कार्य करना है, उसकी महत्वपूर्ण जो नई तकनीक आई है उसके बारे में उनको जानकारी देते हैं। दूसरा आता है एक परिचयात्मक, जिसको इंट्रोडक्टरी प्रशिक्षण भी बोलते हैं, तो इसमें भी हम किसानों को जो जानकारी देंगे, हमारे विस्तार कार्य कार्मिक उनको भी ये ट्रेनिंग के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें भी बहुत सारे जो महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में जानकारी देते हैं, और जो भी आदान प्रदान जो हम करते हैं इनपुट से उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। तीसरा प्रशिक्षण एक आता है, जो नए कैंडिडेट आते हैं उनको फ्रेशर कोर्स देते हैं, एक रिफ्रेशर भी है, रिट्रेनर भी है। अब सेवा के दौरान भी कई प्रकार के, जैसे हम करते हैं कि भाई और ये मेथड, इसकी विधियां क्या है, तो विधियों में ऐसा है कि कई बार जैसे हम एक तो करते हैं ग्रुप डिस्कशन, चर्चा करते हैं, वो भी एक तरह का प्रशिक्षण का विधि है। फिर सेमिनार करते हैं, लेक्चरों के माध्यम से हम जानकारी देते हैं, सिंपोजियम आयोजित करते हैं, कार्यशालाओं का आयोजित करते हैं, और सिंडिकेट मेथड जो है सभा विधि, इसके माध्यम से भी प्रशिक्षण किसानों को देते हैं। पैनल विचार विमर्श है, संवाद के द्वारा भी किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, हमारे कार्मिकों को प्रशिक्षण देते हैं। एक व्यक्तिगत अध्ययन विधि होती है केस स्टडी, ये भी एक प्रशिक्षण की विधि है, और मस्तिष्क प्रवाद विधि जिसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं, इसके द्वारा भी छोटे छोटे समूह में बनाकर कोई विषय देते हैं और उस पर अपने विचार देते हैं, वो भी करते हैं। और एक बच सेशन, यदि बड़ी संख्या में हमारे प्रशिक्षणार्थी होते हैं तो उसको बस सेशन द्वारा छोटे छोटे समूह में बनाकर और एक विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के उस पर देते हैं, तो इसके द्वारा भी हम प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण में हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं। कई बार क्या होता है कि प्रशिक्षक जो ट्रेनर होता है वो प्रशिक्षणार्थियों के क्या ज्ञान की जरूरत है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके बारे में ज्ञात नहीं होता, अपने प्रशिक्षण ज्ञान को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षणार्थियों को प्रस्तुत नहीं करता, विषय जो सामग्री होती है उसका जो अवधारणा है वो भी स्पष्ट नहीं होती, ये भी एक तरह की समस्या है। इसके अलावा और भी जैसे है कि उसको प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए उसके पास जो संसाधन है वो भी नहीं होते, प्रशिक्षण में प्रेरणा व प्रोत्साहन का भी अभाव पाया जाता है। इसके अलावा प्रशिक्षणार्थी और प्रशिक्षण दोनों भी कोई उत्साह नहीं होता, जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ना तो वो प्रशिक्षणार्थी को रुचि ले रहा है, और वो भी जो प्रशिक्षक है वो भी सही तरीके से उनको प्रशिक्षण नहीं देता, ये भी एक तरह की समस्या है। प्रशिक्षणार्थियों की जो समूह रहता है उसमें आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक असमानताएं रहती हैं, कम समय में अधिक सूचना देने के कारण कार्यभार बढ़ जाने की भी एक समस्या है। प्रशिक्षण में प्रशिक्षण प्रक्रिया समय व क्रियाओं के अनुरूप नहीं हो पाती, सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम माध्यम अन्य संस्थाओं के सहयोग नहीं मिल पाना भी एक समस्या है। अब ये आता है कि प्रशिक्षण की जो है वर्तमान में कृषि विभाग कौन कौन से प्रशिक्षण आयोजित करा रहा है, तो कई प्रकार के कृषि उद्यान या उससे संबंध विभाग बहुत सारे प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, जिनमें किसानों को तकनीकी जानकारी तो दी जाती है, उसके साथ साथ योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हमारे जो विस्तार कार्मिक हैं, जो किसानों से सीधा संपर्क रहते हैं, उनको खेती की जानकारी देते हैं, उनको भी प्रशिक्षित करते हैं। प्रशिक्षण के लिए कई तत्व हैं जो बहुत अति आवश्यक हैं। एक तो प्रशिक्षक, दूसरा प्रशिक्षणार्थी, एक दूसरा विषय वस्तु और उसका आसपास का परिवेश और अन्य सुविधाएं, ये बहुत आवश्यक हैं। ये यदि सुविधाएं जैसे हमारे प्रशिक्षण आयोजित करते हैं तो प्रशिक्षण ज्यादातर कृषि विभाग के प्रशिक्षण जो हमारे विस्तार कार्मिकों के किए जाते हैं वो राज्य कृषि प्रबंध संस्थाएं है दुर्गापुरा में, या इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर है जिसको HITC बोलते हैं दुर्गापुरा में, वो हॉर्टिकल्चर से संबंधित प्रशिक्षण वहाँ आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा हमारा टोंक में भी एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र है, कोटा में हमारा इस राज्य कृषि प्रबंध संस्थान का प्रशिक्षण केंद्र है, जयपुर के बाहर कोटा और टोंक में भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जहाँ जहाँ भी कृषि विज्ञान केंद्र है उन कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, प्रगतिशील किसान के खेत पर भी जाकर दिखाते हैं, वहाँ भी एक तरह का प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। तो बहुत सारे प्रशिक्षण है, और कृषि में ये जो प्रशिक्षण की महत्वता है इसका तो किसान भली भांति जानते हैं कि कितना महत्व है। प्रशिक्षण के माध्यम से ही आज किसान उच्च पैमाने पर अच्छी खेती कर रहे हैं, जहां खेती संभव नहीं थी ऐसे क्षेत्रों में भी नई नई तकनीक अपनाकर खेती कर रहे हैं।

0: हैं। कई जगह जैसे जयपुर के आसपास के गांवों में एक तरह से मिनी इजराइल बन गया, बड़े पैमाने पर संरक्षित खेती कर रहे हैं, कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन ले रहे हैं। ये सारा हमारे ये जो प्रशिक्षण आयोजित करते हैं इनका ही योगदान है।
1: वासावा कृषि में प्रशिक्षण को महत्व का बारे में डॉक्टर अतर सिंह मीणा जी बहुत ही बढ़िया जानकारी दिया सा, और ये सब जो बाता जाए अपना किसान भाई ने ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि वहाँ के खेती बाड़ी में ये सब चीजा काम में आवे। तो विशाल जी, अब देखो इतनी चौकी जानकारी के पाछे अब एक लोग भजन तो बने छे, तो सगड़ाई मिले सुना
2: सुनो सर।

एक झलकी ज्ञान विज्ञान खेल स्वास्थ्य और मनोरंजन का खजाना आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी जयपुर का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। रात के 8 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

आपने सुना धूम थ्री का गाना, जिसे गाया था शिवम महादेवन और अनीश शर्मा ने। बोल थे कौशर मुनीर और वीके आचार्य के, और संगीत था प्रीतम का।

अभी आपने सुना पीकू फिल्म का गाना, जिसे गाया था अनुपम रॉय ने। संगीत और बोल थे अनुपम रॉय और मनोज यादव के।

0: अभी आपने सुना माचिस फिल्म का गाना, जिसे गाया था हरिहरन और सुरेश वाडकर ने, बोल थे गुलजार के, संगीत था विशाल का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। अब आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन, समाचार संध्या, न्यूज एट 9, उसके बाद उर्दू में समाचार और पब्लिक स्पीक।
1: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला कल से बर्मिंघम में शुरू होगी। यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। और जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से टोक्यो में शुरू होगा। तो अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर इंग्लैंड पर 270 रन की शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया है। भारत ने इस मैदान पर खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में एक यादगार जीत दर्ज की।
2: भारत की बेटियों ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत मेजबान इंग्लैंड को 270 रन के बड़े अंतर से पस्त करते हुए एक यादगार जीत दर्ज की है। भारत ने मैच की पहली पारी में 285 रन बनाए, जिसमें स्मृति मंधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर की 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद पारी आई भारतीय गेंदबाजों की, जिन्होंने इंग्लिश टीम की पूरी बल्लेबाजी को महज 170 रन पर समेट दिया। एमी जॉन्स ने मेजबान टीम के लिए सर्वाधिक 52 रन बनाए, जबकि भारत की तरफ से क्रांति गौड़ 5 विकेट लेते हुए लॉर्ड्स के मैदान पर 5 विकेट हॉल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। भारत ने पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड पर 115 रन की बढ़त हासिल की। इसके बाद फिर भारत ने अपनी दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और स्कोर बोर्ड पर 7 विकेट खोकर 341 रन चढ़ाए। इसके बाद भारत ने अपनी पारी घोषित कर दी। इस पारी का मुख्य आकर्षण रहा यास्तिका भाटिया का शानदार शतक, जिन्होंने 113 रन बनाए। वे लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज बनी। उनके अलावा स्मृति मंधाना ने 70 रन और ऋचा घोष ने नाबाद 50 रन की पारी खेली। इंग्लैंड की तरफ से सोफी एक्लेस्टोन ने 5 विकेट निकाले। जीत के लिए 457 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेजबान टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 186 रन पर ढेर हो गई। एमी जोन्स ने 54 और सोफी एक्लेस्टोन के 50 रन के अलावा कोई भी इंग्लिश खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों के सामने नहीं टिक सका। इस पारी में भारत के लिए स्नेह राणा ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि सयाली सदघारे, क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। शानदार गेंदबाजी के लिए क्रांति गौड़ को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। देश विदेश से इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय टीम को बधाइयां मिल रही हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो इस जीत के बाद इस टीम का हर एक खिलाड़ी इस लम्हे को, उस गेंद को अपने दिल में सजो के रखेगा जो शायद आखिरी गेंद थी और जिसने भारत की जीत की पताका पूरे विश्व में लहराई।

0: 142 years of test match cricket in the men's game, we've witnessed the first ever in the women's, and it has been a comprehensive win by India. They win by 171 runs. They continue their magnificent form in this format against England.
1: शायद इस गूंज ने कुछ धुंधली किया होगा विश्व कप टी20 विश्व कप के पहले ही दौर में बाहर होने के बाद भारतीय महिला टीम की निराशा को। और अब रुक करते हैं भारतीय पुरुष टीम का। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे से बर्मिंगम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
2: भारतीय टीम इंग्लैंड के साथ कल से शुरू हो रही 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए तैयार है। 2020 श्रृंखला में मिली निराशाजनक हार के बाद भारतीय टीम एक दिवसीय मुकाबलों में हिस्सा बराबर करने के इरादे से उतरेगी। शुभमन गिल की कप्तानी में एक दिवसीय फॉर्मेट में भारतीय टीम अधिक मजबूत नजर आ रही है। हेडमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली के आने से टीम को नई मजबूती मिली है। मध्यक्रम की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन और अक्षर पटेल पर होगी। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर और नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह की वापसी टीम में गेंदबाजी को नई ताकत देगी। उनके साथ प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और गुरनूर बरार को चुना गया है। स्पिन की जिम्मेदारी कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई पर होगी। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत का पलड़ा भारी है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 110 एक दिवसीय मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 61 में भारत ने और 44 में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है। 2 मुकाबले टाई रहे हैं, जबकि 3 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका। ऐसे में भारत की नजर एक दिवसीय श्रृंखला में शानदार जीत दर्ज कर 2020 की हार का हिसाब चुकता करने पर होगी। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम की नजरें होंगी कि किस तरह उस 0-2 और 4-0 की हार को मिटाया जाए, और खेल प्रेमियों की नजरें होंगी कि उनके फेवरेट विराट कोहली और रोहित शर्मा वापस मैदान पर उतरेंगे, और मैदान पर उतरेंगे भारतीय पेस बैटरी के सबसे घातक खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह। तो कह सकते हैं कि एक मजबूत संयोजन जिसमें युवा खिलाड़ी और अनुभवी खिलाड़ी होंगे, और तैयारियों का एक ही रूप होगा और नजर होगी 2027 के विश्व कप के लिए अपनी तैयारियों को कैसे अंतिम रूप दिया जाए। और अब रुक करते हैं इंग्लैंड का, जहां विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का समापन हो गया है और यानिक सिनर ने लगातार दूसरी बार विंबलडन पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इटली के इस युवा खिलाड़ी ने फाइनल मुकाबले में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेरेव पर 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 से शानदार जीत दर्ज की।
3: इटली के यानिक सिनर विंबलडन पुरुष सिंगल्स के नए चैंपियन बन गए हैं। सिनर ने ज़ेरेव पर लगातार 10वीं जीत दर्ज करते हुए अपने करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम जीता। इसके साथ ही सिनर विंबलडन पुरुष सिंगल्स के खिताब का बचाव करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं। विंबलडन 2026 के खिताबी मुकाबले का पहला सेट बेहद रोमांचक रहा। सिनर और ज़ेरेव के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन ज़ेरेव टाई ब्रेकर में सेट 7-6 से अपने नाम करने में सफल रहे। इसके बाद सिनर ने वापसी करते हुए दूसरा सेट 7-6 से अपने नाम कर स्कोर 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। तीसरे सेट में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला, पर सिनर ने 6-3 से सेट जीत लिया। चौथे सेट में सिनर ज़ेरेव पर हावी दिखाई दिए और सेट को 6-4 से जीतने के साथ ही विंबलडन 2026 के पुरुष सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। आइए सुनते हैं इस ऐतिहासिक जीत के बाद नए विजेता सिनर ने क्या कहा।
4: अमेजिंग साशा डिड, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू एंड योर होल टीम एंड फैमिली। यू रीच्ड वन ऑफ योर गोल्स, योर मेन गोल्स, विनिंग ग्रैंड slams and you made it happen in Paris today. You were so close. If you play like this, I'm very sure you're gonna have this one at home as well. So amazing, keep going. I know another goal is to for you to become number one in the world.
3: वहीं दूसरी तरफ ज़ेरेव ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया और अंत तक मुकाबले में लड़ते नजर आए।
5: Well, first of all, Yannick, I don't really like you anymore. I lost to you 9 times in a row. No, but first of all, congratulations to Yannick. He showed once again why he's the best player in the world. It was great to share the center court with you on finals weekend. It's a great honor to be here. Unfortunately, I didn't go my way, but congratulations to you first of all.
3: और इस मुकाबले के साथ ही साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन समाप्त हो गया है। अब वर्ष का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम अमरीकी ओपन 24 अगस्त से न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो अब एक ग्रैंड स्लैम समाप्त हुआ और अगले की तैयारी है, लेकिन जिस तरह का खेल इन दोनों खिलाड़ियों ने दिखाया, शायद हर दर्शक तालियां बजाते हुए नजर आ रहा था उस समय मैदान पर, और एक अच्छी राइवलरी आने वाले समय के लिए तैयार होती हुई इस टूर्नामेंट में, जहां एक तरफ ज़ेरेव हैं जो जूझते हैं, हर मैच को अंत तक ले जाते हैं, और इसी तरह उन्होंने फ्रेंच ओपन का भी खिताब जीता था। और देखना होगा कि इस साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम का खिताब किस खिलाड़ी के सर सजता है।

0: और अब रुख करते हैं नीरू डांडा का, जिन्होंने इटली के लोनाटो में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वे एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। इस अवसर पर नीरू ने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आज तक कभी नहीं हुआ था।
1: मुझे ऐसा लग रहा बहुत स्पेशल दिन था पूरे इंडियन शूटिंग टीम के लिए और इंडिया के लिए, स्पेशली मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। और दूसरा ये था कि हमने बैरियर ब्रेक किया है जो आज तक नहीं हुआ था। तो ये चीज मेरे को शुरू से ही लग रही थी कि ये करना है। मैं पिछले 3 बार से पहले उनको मिस कर रही थी, हर एक बार बाहर हो रही थी, कभी शूटआउट में कभी फिर नंबर से बाहर हो रही थी। तो उसको काफी ये बैरियर ब्रेक हुआ तो अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है और फीलिंग नेक्स्ट लेवल है।
0: जब नीरू से पूछा गया कि इतने हाई प्रेशर मैच से पहले वो कैसा महसूस कर रही थी तो नीरू का जवाब बड़ा मजेदार था। उन्होंने कहा कि वो मैच से पहले ये मानकर उतरी थी कि वे चैंपियन हैं।
1: प्रेशर तो नहीं होता, आप जहां खड़े हो ना वो चैंपियन थे, लेकिन उस दिन तो मैं भी चैंपियन हूँ अगर चैंपियन के साथ खड़ी हूँ। मेरा तो वही माइंडसेट था कि मैं चैंपियन हूँ और मैंने जैसे हमारा अनाउंस होता है लाइन में खड़े होते हैं सभी शूटर्स, तो उस टाइम स्ट्रेटेजी मेंटली ये किया था मैंने, सबसे पहले ये कर दिया था ऐसे लाइन में और फिर विक्ट्री बना दी थी।
0: तो एक चैंपियन खिलाड़ी की तरह वो मैदान पर उतरी और एक चैंपियन बनकर ही वापस लौटी। और ऐसे ही कुछ चैंपियन लौटे हैं चीन के ओर्डोस से। भारत ने इस प्रतियोगिता में एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान कल 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल थे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: चीन के ओर्डोस में भारतीय एथलीट अपने शानदार प्रदर्शन से एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में अपनी छाप छोड़ते नजर आए। भारत के लिए आनंद सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता, जबकि 4x400 मीटर के महिला और मिक्स्ड वर्ग में भी भारत ने स्वर्ण पदक जीता। शिवाजी पराशर ने 5000 मीटर और शिवाजी परशुराम ने 10000 मीटर में रजत पदक अपने नाम किया, जबकि भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x100 मीटर रिले में रजत पदक जीते। अगर कांस्य पदक की बात की जाए तो शिवम लोहाकरे ने भाला फेंक में, भरतप्रीत सिंह ने चक्का फेंक में, प्रिया ने महिलाओं के चक्का फेंक में, अभय सिंह ने 200 मीटर रेस, शवांगी ने 400 मीटर बाधा दौड़, शकील ने पुरुषों की और भूमेश्वरी ने महिलाओं की 800 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता। प्राची देवकर ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टेपल चेज स्पर्धा में और विनोद सिंह ने 5000 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय टीम 3 स्वर्ण सहित 16 पदकों के साथ प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रही। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैम।
0: खासकर बात अगर आनंद की जाए जो जैवलिन में भारत की एक नई आस बनकर उभरे इस युवा खिलाड़ी ने अंडर 23 वर्ग में खेलते हुए पहली बार 80 मीटर का बैरियर इस वर्ग में पार किया तो कह सकते हैं कि जैवलिन का एक बहुत अच्छा फ्यूचर भारत में पनपता हुआ। और इसके साथ ही तमाम खिलाड़ियों ने अपना पर्सनल बेस्ट देते हुए पदक अपने नाम किए हैं। पहले ओडिशा, उसके बाद चीन का ओर्डोस, जहां भारतीय खिलाड़ी रोज नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब रुख करते हैं मुक्केबाजी का, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने कई और नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन आज भी जारी है। अंडर 23 वर्ग में कल 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश किया था, जिसमें से 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाज थे। इनके फाइनल मुकाबले अब खेले जाएंगे, जहां वो स्वर्ण पदक के लिए दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे। और आज अंडर 19 वर्ग के सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं। महिला वर्ग में अब तक 8 महिलाओं खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए प्रवेश कर लिया है, जहां पर वो स्वर्ण पदक के लिए दमखम आजमाएंगी। इन खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो अंडर 19 वर्ग में 45 से 50 किलोग्राम वर्ग में गुंजन ने, 51 किलो वर्ग में चंद्रिका पुजारी ने, 54 किलोग्राम वर्ग में जॉयश्री चिरोम, 57 किलोग्राम वर्ग में प्राची, 60 किलो वर्ग में चाहत, 75 किलो वर्ग में अंशिका और हैवी वेट कैटेगरी की बात की जाए तो 80 किलोग्राम और उससे अधिक के वर्ग में मेघा ने और 81 किलोग्राम और उससे अधिक के वर्ग में प्राची टोकस ने फाइनल में जगह बना ली है, जहां पे ये खिलाड़ी स्वर्ण पदक के लिए मुकाबले करते नजर आएंगे। अगर पुरुषों के वर्ग की बात की जाए तो लड़कों के सेमीफाइनल मुकाबले इस समय खेले जा रहे हैं जकार्ता में। और इन स्वर्ण पदक और रजत पदक के अलावा 7 खिलाड़ियों ने अंडर 23 वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक भी हासिल किए। और अब मुक्केबाजी के बाद रुख करते हैं बैडमिंटन का, जहां पर जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है, जहां कई दिग्गज खिलाड़ी एक बार फिर एशिया कप से पहले, एशियन गेम्स से पहले अपना दमखम आजमाते हुए नजर आएंगे, जिसमें सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी

0: और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे।
1: सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार पुरुष डबल जोड़ी जापान ओपन में भारत की अगुवाई करेगी। सात्विक कंधे की चोट के कारण जून में इंडोनेशिया ओपन से हट गए थे। पहले दौर में उनका मुकाबला डेनमार्क के डेनियल लुंडगार्ड और मैट्स वेस्टरगार्ड से होगा। सिंगल्स में भारत का दारमदार एक बार फिर लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी पर टिका होगा। इस साल की शुरुआत में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले लक्ष्य जापान की कोकी वातानाबे के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आयुष को अपने पहले मुकाबले में थाईलैंड के कुनलावत वीटी डसर्न के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु महिला सिंगल्स में मलेशिया की वोंग लिंग चिंग से भिड़ेंगी, जबकि उन्नति हुडा अपने पहले मैच में चीनी ताइपे की हुआंग यू हसुन का सामना करेंगी। हरिहरन अमसा करुणन और एमआर अर्जुन पुरुष डबल्स के पहले दौर में चीनी ताइपे की लू झे हुई और यांग पो ह्यूसान का सामना करेंगे। ध्रुव कपला और तनिषा क्रास्टो तथा रोहन कपूर और राधविका शिवानी गड्डे की मिक्स डबल जोड़ी भी इस टूर्नामेंट में अपना भाग्य आजमाएंगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो एक और बैडमिंटन टूर्नामेंट तैयार है, यहां से खिलाड़ियों की नजर होगी कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट जहां पे एशियन गेम्स हैं और कॉमनवेल्थ जैसी प्रतियोगिताएं होनी है उसके पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए और तमाम खिलाड़ी जो उन खेलों का हिस्सा होंगे जैसे सात्विक रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी जो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में आए, आयुष शेट्टी पे भी काफी लोगों की नजरें रहेंगी जिन्होंने पिछले कुछ समय में अपने खेल से काफी प्रभावित किया है मैदान में और मैदान के बाहर भी लोगों को। और श्रोता, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमरीका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमरीका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान के टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड

0: एंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। यह कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3 लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली हर

0: किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और दो एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
2: Provisionally, we are looking at a 10% increase.
3: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
2: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चूमू केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध IED विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपिन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16

0: भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए। मैं सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं सी रामचंद्र, फिल्म का नाम है अनारकली।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में अगला गीत। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है रोशन की, फिल्म का नाम है ताजमहल।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है कमर जलाल आबादी ने, धुन है हंसराज बहल की, फिल्म का नाम है चंगेज खान।

आइए सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है प्रेम धवन ने, संगीत है रोशन का, फिल्म का नाम है वल्ला क्या बात है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
5: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
6: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है शकील बदायूनी, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है घूंघट।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में वो गीत जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है काली घटा।

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम की अगली पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है उड़न खटोला।
2: चले आज तुम जहां से

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तेनू।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: यह है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललिता मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण पर,
1: जिसे दुनिया चंदन टाकू के नाम से जानती है। और चंदन किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखता। मांगो, क्या चाहती हो?
2: मैं जो मांगूंगी वो आप दे सकेंगे?
1: मांग कर देखो, 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख।
2: मुझे पैसों की जरूरत नहीं। तो आप खिकोटे पर पैसा घुंघरों के झनकार के साथ बरसता है, जब चाहूं बटोर सकती हूँ।
1: फिर क्या चाहिए?
2: इज्जत चाहिए, जो इस बाजार से बहुत दूर है। आप सच जानिए, मैंने आज तक इज्जत का सौदा नहीं किया है। आवाज बेची है, अदाएं बेची है। आप मुझे एक औरत की जिंदगी दे सकते हैं, एक शरीफ घर दे सकते हैं। आप मुझे इस पाप के दलदल से निकाल सकते हैं।
1: तुम में किसी शरीफ का खून है, ये तुम्हारे खून और आत्मा की पुकार है। मैं वादा करता हूं, जो कुछ तुम मांग रही हो मैं तुम्हें उसी तरह दूंगा जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को जहेज देता है। कल सुबह एक शरीफ आदमी तुम्हें लेने आएगा, बेझिझक उसके साथ चले जाना।
0: सन 1940 से सन 2007 तक अभिनय जगत में सक्रिय रहने वाले अभिनेता प्राण केवल सिकंद की गिनती एशिया के 25 सर्वकालिक महान अभिनेताओं में की जाती है। 12 फरवरी सन 1920 को पुरानी दिल्ली में कोटगढ़ बल्लीमारा में

0: जन्म हुआ था प्राण का। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। उनकी माताजी का नाम था रामेश्वरी। युवा प्राण एक मेधावी छात्र थे और गणित पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी पढ़ाई देहरादून, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव और रामपुर में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा प्राण दिल्ली की एक फोटोग्राफी कंपनी में अप्रेंटिस हो गए। फोटोग्राफी के सिलसिले में ही प्राण को शिमला जाना पड़ा, जहां उन्होंने रामलीला के मंचन में भाग लिया। उस रामलीला में मदनपुरी राम बने थे और प्राण बने थे सीता, और प्राण ने सीता की भूमिका निभाई थी।
1: आज चाय भजिया कोर्स नहीं मिलेगा, आज दुकान बंद है।
2: दुकान बंद है?
1: किस खुशी में? तुम्हारी खुशी में। तुम खुश तो मैं भी खुश।
2: अरे मैं क्यों खुश भाई?
1: हम जो बनते हो, आधी आधी रात को एक सुंदर जवान लड़की को अपने घर में लाते हो, उससे खुशर पुशर बातें करते, तो पूछते मुझसे हो खुशी किस बात की?
2: किसने कहा तुझे सर?
1: एक काले कौए ने।
2: काले कौए ने?
1: हाँ, सुबह सुबह आया था। हकलाता जरूर है लेकिन सच्ची बात सुनाता है।
2: साला रामू गुपचुप सब बता गया तुझे?
1: अरे बड़े खुश नसीब। अच्छा ये बताओ कि अब कब इंतजाम करूँ?
2: किस चीज का?
1: अरे पंडित का, मंडप का, ढोल तमाशे का, बाजे का, बारात का।
2: बस बस प्यारे भैया, यही तो तुम में एक कमजोरी है।
1: क्या?
2: आम पकेने की सारे मोहल्ले को दावत दे दी।
1: अरे भैया जब आम लगे हैं तो एक दिन पकेंगे भी, एक बार मुझे उससे मिला दो
2: ताकि तू अपनी बड़बड़ शुरू कर दे।
1: अरे भाई तुमने गड़बड़ की है तो मुझे बड़बड़ करनी पड़ेगी। अरे सुन सुन सुनो, गुस्से मत हो। अगर तुम बोलो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

0: से चार हो सकते हैं, चार से आठ हो सकते हैं, आठ से साठ हो सकते हैं, जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोल।
1: लाहौर की हीरा मंडी में मौजूद एक दुकान पर संयोग वश प्राण की मुलाकात दल सुख पंचोली की यहाँ नौकरी करने वाले फिल्म लेखक वली मोहम्मद वली से हो गई। सन 1940 में आकर्षक कदकाठी के नौजवान प्राण को दल सुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में नायक की भूमिका मिली। फिल्म यमला जट बहुत कामयाब रही। इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक थे मोती बी गिडवानी। इसके बाद 1941 में प्राण साहब ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी अभिनय किया। पंचोली आर्ट्स के बैनर तले 1942 में निर्मित खानदान प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी।
2: कैदी नंबर 602
3: हाजिर है।
2: सर झुकाकर बात करो।
3: ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा।
2: बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना हो। होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूं।
3: तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है।
2: लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूं। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए।
1: सन 1942 से 1946 के मध्य प्राण ने पंजाबी की 21 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इनमें से 18

फिल्में सन 1947 में रिलीज हुई, लेकिन 1947 में विभाजन के दौरान उनकी अभिनय यात्रा कुछ समय के लिए थम गई। विभाजन के दौरान प्राण मुंबई आ गए और यहां उन्हें अपनी नई पारी शुरू करने के लिए लगभग 8 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

پالا ہم سفر ہم راز ہوں تا قیامت

0: मुंबई में रहते हुए उन्होंने मरीन ड्राइव के डेलमर होटल में भी काम किया। मुंबई में मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद से उन्हें शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में अभिनय की नई पारी शुरू करने का अवसर मिला।
1: मेरे बात करने का तरीका गलत था।
2: तरीका छोड़ो साहेब, बात गलत था। तेरी मैं हालत रही, कल का आपका रम हमारे पे उधार है, जरा चुका देगा।
1: नो थैंक यू, मैं सुबह सुबह नहीं पीता।
2: पर हम तो 24 घंटा पीता है साहेब। आप बड़ा लोग तो टाइम टेबल देखकर काम करता है। वेरी क्लेवर यू व्यक्ति, लेट गो। कोई मतलब का बात है, बोलो।
1: आप ही के मतलब की बात है मिस्टर बर्गेंद्र। मैं पूछ

0: में आया हूँ आपको कितना पैसा चाहिए?
1: हमको कितना पैसा चाहिए? क्या बोला तुम? हम ठीक सुना नहीं?
0: बिल्कुल ठीक सुनाया आपने मिस्टर ब्रिगेंडर। बहुत अच्छे मछेरे हैं आप, अच्छी मछलियां फांस लेते हैं, और इस बार राजा उसमें फंस गया है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान। कहिए क्या कीमत लगाई है मेरे बेटे को आजाद करने की? 30,000, 50,000।
1: पैसा का किताब लेकर आया तुम? मैन तुम वेट, यू वेट मिस्टर नाथ, मैं भी बताता हूं तुमको, यू वेट। किताब लेकर आया पैसा दिखाता है, यू वेट मैन। पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी, तुम क्या समझता पैसा तुम्हारे पास? पैसा हमारे पास थे देखो, लेकिन तुम बड़ालों के पास सिर्फ पैसा है, बंगला है, मोटर है, सिर्फ पैसा है। यू हैव गॉट ओनली मनी, दिल नहीं है। और हम छोटालों के पास इज्जत है, दिल है, खुशी है, और ये जो चीज है ना उसको हम बेचता नहीं है, समझा तुम?
2: बेचता नहीं है, धंधा करवाता है इससे, धंधा।
0: इज्जत की बातें करने वाले अपनी बेटियों का चारा बनाकर करोड़पतियों के बेटों के आगे नहीं डाला करते, समझे?
3: फिल्म जिद्दी में प्राण साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई और इसके बाद ऐसी भूमिकाएं ही प्राण साहब की पहचान बन गई।
4: तू सुना, कॉलेज का क्या हाल है?
5: ठीक ही है। तो कॉलेज के बारे में तो पूछने लगा।
4: वो बचपन में तू किसी किताब से कुछ जानवरों की कहानी सुनाया करता था ना,
5: वो हितोपदेश पंचतंत्र में से
4: कुछ ऐसा ही था। आज उसकी एक कहानी याद आ गई।
5: कौन सी?
4: वो गीदड़, बिल्ली और खरगोश की।
5: हाँ हाँ हाँ,
4: गीदड़ और बिल्ली मिलकर खरगोश मारने की कोशिश कर रहे।
5: क्या बात है, दूसरे को देख रहा?
4: कहने का चाहता है यही कि खरगोश अब भी संभल जा वरना फंस जाएगा। दो दिन पहले धर्मदास के घर गीदड़ और बिल्ली की दोस्ती अपनी आंखों से देखकर आया हूँ। जिन पर तुझे बहुत विश्वास है ना, जिनको तू अपने घर का समझता है ना, वही सब मिलकर तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं।
3: करीब 360 फिल्मों में प्राण साहब ने केवल नेगेटिव रोल किया है।

0: रोको अगर समझो राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो।
1: राज की बात कहतो जान में।
2: एक तरफ होते दिलीप कुमार देवानंद या राज कपूर हीरो के रूप में, और उतने ही जानदार रोल के रूप में दूसरी तरफ होते प्राण।
3: झूठ और झूठ का सच बना देने वाला एक ही गवाह, वो है गोलू गवाह। हर केस का सुलझाओ मिनटों में। गोलू गवाह की फीस हर के लिए एक ही है। चोरी के इल्जाम में 25 रुपए, एक्सीडेंट में 30 रुपए, डकैती में 75 रुपए, जायदाद मकान में 100 रुपए और खून के इल्जाम में 200 रुपए। वकीलों से परेशान लोगों के लिए ताकीद है कि वो गोलू गवाह से भेंट करे। अरे गीता पर हाथ रखकर झूठी गवाही और झूठी कसम खाना कोई आसान गल नहीं, वो एक ही कर सकता है। और आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का हमदर्द गोलू गवाह, अरे गोलू गवाह AWD मतबल एडवोकेट विदाउट डिग्री। कोई ग्राहक आया?
4: आया सेठ रतिराम।
3: आओ सेठ रतिराम मलंग, हमें क्या करना होगा काम?
4: तलाक का है काम, बीवी को बचा ले का इल्जाम।
5: मुझे बचा ले भाई, शादी करके बड़ा पछता रहा हूँ, राम कसम मुझे बचा ले।
3: अरे सतनाम सेठ, शादी तो होती है बर्बादी, इसीलिए तो हमने अभी तक नहीं।
5: गुल ये 100 रुपया गवाही के एडवांस
3: सेठ। अब बस समझ ले कि तुम्हारा हो गया काम, अब इधर और खड़े रहकर हमें ना

0: करो बदनाम चलो।
1: एक नंबर का ही आसे सेठ।
0: अरे हमें भी तो भरना है अपना पेट।
2: गोलू भैया।
0: अरे ये गोलू भैया की कौन सी पहन आ गई?
2: से ज्योति राम की बीवी हूँ, तीन बच्चे लेकर कहाँ जाओ? वो किसी लड़की के चक्कर में आके मुझे तलाक देना चाहते हैं।
0: ओ भाई ये हमें नहीं मालूम, हमारा कंधा गवाही देना, तू ज्यादा पैसे दे दे।
2: उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं छोड़ा मेरे पास जो मैं वकील कर सकूं।
0: ओ, यही तो मुसीबत है। ये ले फड़ा अपने पति के 100 रुपए, पर मैं गवाही उसी की दूंगा।
3: हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर ऐसा रहा जब प्राण साहब की खलनायकी की प्राण प्रतिष्ठा के बिना फिल्म निर्जीव मानी जाती थी। उनका रुतबा एक हीरो जैसा ही था। उस दौर में फिल्मों की शुरुआती नामावली में उनका नाम अलग से यूं दिया जाता, प्राण भारतीय सिनेमा के प्राण बन गए। अपने जानदार अभिनय से उन्होंने अनेक फिल्मों की निर्जीव कहानी में भी प्राण फूंक दिए। सन 1945 में प्राण ने शुक्ला अहलूवालिया से विवाह किया। उनकी 3 संतानें हैं, अरविंद, सुनील और पिंकी। दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार प्राण के घनिष्ठ मित्र थे। 1951 से 1987 के मध्य इन दोनों ने 27 फिल्मों में एक साथ काम किया था और इनमें से 20 फिल्में सुपरहिट रही।

0: फिल्मी दुनिया में प्राण साहब के अन्य प्रिय मित्रों के नाम हैं शम्मी कपूर, प्रकाश मेहरा, किशोर कुमार, दिलीप कुमार और मनोज कुमार। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में प्राण ने मलंग बाबा की यादगार भूमिका निभाई।
1: देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ।

0: प्राण जिन दिनों फोटोग्राफर के रूप में नौकरी करते थे उन्हें महीने में 200 रुपए मिलते थे, लेकिन फिल्म यमला जट के लिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। यमला जट में काम करते हुए उन्हें महीने के 50 रुपए मिला करते थे। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ प्राण की पहली फिल्म थी आजाद। इसी फिल्म से दोनों गहरे दोस्त बन गए। जिस फिल्म में प्राण साहब ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई वो थी जंगल में मंगल। इसके बाद इंसाफ और खून का रिश्ता में भी उन्होंने दोहरी भूमिकाएं निभाई। प्राण साहब ने तेलुगु और बांग्ला भाषा की फिल्मों में भी काम किया। खलनायक के रूप में उन्होंने अपनी अनेक भूमिकाओं में हास्य का रंग भी डाला। ये फिल्में थीं कश्मीर की कली, पूजा के फूल और हाफ टिकट।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: सरिया ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: प्राण अनेक संस्थाओं से संबद्ध थे, खेलों से उन्हें बहुत लगाव था। बॉम्बे डायनामोस फुटबॉल क्लब से जुड़ी टीम के वो मालिक थे। यादगार अभिनय और सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने प्राण साहब को पद्म भूषण के अलंकरण से और सन 2013 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 2013 की 12 जुलाई को इस लोक में अपनी अनेक भूमिकाएं निभाकर महायात्रा पर चले गए प्राण। अपनी अनुपस्थिति में वो अपने प्राणवान अभिनय से अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखेंगे।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज हमने किया है मन्ना डे की आवाज में, अनजान के बोले संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे आपकी कसम फिल्म से। आवाज किशोर कुमार की है, आनंद बख्शी के बोल है, आरडी बर्मन का संगीत।

अभी आपने किशोर कुमार की आवाज में गीत सुना था साहेब फिल्मों से, अगला गीत भी आप किशोर कुमार की आवाज में ही सुनेंगे।

अरमान फिल्म से अगला गीत आप सुनेंगे। संगीत बप्पी लहरी का है, गीतकार अनजान, आवाज लता मंगेशकर की।

0: फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की ही आवाज में। संगीत आरडी बर्मन का है, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, फिल्म है अलग अलग।
1: आसमान पर रहता है एक जादूगर,

अगला गीत आप सुनेंगे सीमा फिल्म से। आवाज मन्ना डे की है, गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जय किशन का।

0: मुकेश और साथियों की आवाज में अभी आपने गीत सुना धर्म कर्म फिल्म से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार।
1: व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर

0: लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यही समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन 5:53 पर फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।